वाला नाम रूपी जल है ना, गुरु शुभ सिक्ख्या शुभ दीख्या दे के उन्हां दे हिरदे दे विच नाम रूपी अमृत टिका दिंदा है। हुण शरीर रूपी भांडे हिरदे रूपी भांडे जे गुरु की संगत विच आ के सिद्धे रखने ने ते इन्हां दा मूंह खुला रखना जिहड़ा मनुख दा अपना जतन है। सब कहिंदे जे संगत विच

मूर्ख मुग्धा जन्म पया प्रणवत नानक तन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आस्था महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की है तेरी बरिया अवर काज तेरा कित ना काम।

सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाई ब्रह्मा बप धरा काल पाए शिव जीव अवधरा काल पाए कर विषण पर काशा सकल काल का किया तमाशा।

सकल प्रजा आजन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोबद कियो, कड़ कड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चिट्ठी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान है, कड़ कड़ के बड़ बड़ की जान है, जा बोध करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देही अपारा, जब या करख कर तो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे, तुम सब ही तेरे तंदरालम, जानत भेद भेद अरयालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अना

कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पेन पेन तो है तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कहीं पूपा। अंडज जेरज सिदज कीने, उतपुज खान बहोर रच दीने। कहूं भूल राजा वह बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार या सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस कुज तब सरणी परे, तन के दोष्ट दुख तहव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारी, तन के तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नह आए हैं। रक्षा हुई ताहीं सब काला, दुष्ट अरेष्ट टरें तत्काला। कृपा

सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से दी मन वजियां बधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गा बने आईया शब्दो तंगा वो हरि के रामन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो परे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।

हर का नाम न जप सुगवारा, क्या सोच है बारंबारा रहो। अंधियारे दीपक चहिए, एक बस अगोचर लही है।

मैंने मेरी दुआ सतगुरां का तोड़ना, सतगुरां का तोड़ना, मैंने मेरी दुआ एहो सुन मनोरथ दी धरती दी फेरी दा, एहो सुन मनोरथ

ओ भगतां दे समकाली मालक रब दी गद्दी दा, भगतां दे समकाली मालक रब दी गद्दी दा। ओ सच्ची जोत आई कहना सच पमती दा, सच्ची जोत आई कहना सच

0: ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਉਸਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖੇ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਿਨਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਦਿਨਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਉਜਲ ਹੈ, ਦਿਨ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣਾ 'ਤੇ ਬੜਾ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਝ ਆਖੇ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗਾ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਹੌਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਟੰਕੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਝਰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਮਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋਏ ਸਬਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ, ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਭ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਰਾਗ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮਹਿਜ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਬਣ। ਜਦ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਸੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸੁੱਖ ਆਯਾਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸੁੱਖ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਵੋ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਾਸ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ, ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵਤੇ। ਪਸ਼ੂ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਦੇਵਤਾ ਕੇਵਲ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਰਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮ ਅਸਤ, ਉਦ ਗਰਬੂ ਨਵਾਸ਼ਦ ਹੈਜ਼ਮ ਅਸਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਹੈਵਾਨ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਹੈਵਾਨ, ਇਨਸਾਨ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ, ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਤਨ ਤੇ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਰੂਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾ। ਜਿਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਲ ਖਾਣ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਤਨ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। देवते कोल विकसत मन ते है, सारे संसार ओदे कोल मौजूद ने, ज्ञान है। लेकिन मंजिल दी पूर्ति प्रभु विच लीन हो सके जिहड़ी साधना रह गई है ओदे वास्ते तन चाहिए नहीं है। देवते कोल मन है, तन नहीं है। केवल मनुख है, एदे कोल तन भी है, मन भी है। ईश्वर विच लीन होण दा मौका ना पशु कोल है, ना देवते कोल है, केवल मनुख कोल है। भई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भी तर तू देख बिछा। दुनिया भर दे अवतारी पुरुष मनुख नू समझाण वास्ते आए ने, किधरे पिछे ना मुड़ जाए। पानी निवाण दी तरफ अपने आप जांदा है, पर चढ़ाइयां ते चाड़ना वे तो प्रेशर देना पेगा उंज नहीं। जिंदगी निवाण दी तरफ, पशुआं दी तरफ अपने आप जांदी है। मनुख अपने आप ही लोभी बन जांदा है, क्रोधी बन जांदा है, कामी बन जांदा है, अहंकारी बन जांदा है। कोई किताबां पढ़न दी लोड़ नहीं, कोई फिलसफा पढ़न दी लोड़ नहीं, कोई कथा कहानियां पढ़न दी ते सुनन दी लोड़ नहीं। मनुख अपने आप ही अहंकारी हो जांदा, पानी निवाण दी तरफ अपने आप जांदा है। पानी बुलंदियां ते जा सके प्रेशर चाहिदा है। मनुख अपने आप संत नहीं बन सकता, भगत नहीं बन सकता, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। सत्संग दा सहारा चाहिदा है, अवतारां दा कलाम बाणी चाहिदी है, कथा कीर्तन दी साधना चाहिदी है, अमृत वेले दा उठना ते जप, ये सारे साधन चाहिदे ने तां मनुख दी जिंदगी बुलंदियां नूं छूवे। अजोके समय दे ये ख्याल ही दुनिया च हटदा जा रहा है। ये भी मैं इस तरह रोज रोज संसार बुरा होंदा जा रहा है, बुरा। पता है कारण? दो नुक्ते बयान करा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, प्रभु की उस्तत करो संत में, सावधान एकागर चे। बड़ी सावधानी, बड़ी एकाग्रता चाहिए, प्रभु की उस्तत करो। और जिस कर्म दे पूरा मन ना आवे उदे संस्कार नहीं बनते, ये हकीकत है। पूरा मन ना आवे उदा ज्ञान भी नहीं मिलता। और ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे जुड़े हुए ने। ये नुक्ता मैं थोड़े सामने रखा। बिना ध्यान दी एकाग्रता तो किसी भी वस्तु दा ज्ञान हासिल करना बड़ा औखा है, औखा है। यह दो नुक्ते बड़े ध्यान नाल सुनना, अभ्यासी सजना दे काम आणगे। नवी नवी साइकिल चलानी सीखनी है, बड़ा ध्यान है, बड़ी एकाग्रता। क्यों? अगर एकाग्रता भंग हो गई तो साइकिल भी गई, तो साइकिल चलाने वाला भी गया, लत्तां बाहां टूटणगियां। एकाग्रता है, सावधानी है। जैसे जैसे ध्यान दी एकाग्रता ज्ञान बन जाती है, साइकिल चलाना आ जाता है, ध्यान बिखर जाता है। फिर तो हुण दूजे नाल गप्पां मारदे आ साइकिल चला रहे हैं। नवा नवा स्कूटर चलाना सीखना है, बड़ी ध्यान दी एकाग्रता है। उन्हों पता है एकाग्रता मेरी भंग हो गई तो स्कूटर भी गया, तो मैं भी गया, मेरी भी खैर कोई नहीं। बड़ी एकाग्रता है, बड़े ध्यान दा टिकाओ है। सहजे सहजे अभ्यास करदिया करदिया ध्यान ज्ञान बन गया, स्कूटर चलाना आ गया। हुण ध्यान बिखर गया, हुण ते नाल पिछे पिछे बैठे नाल गप्पां मारदा वही चलाई जा रहे, ध्यान बिखर गया। ज्ञान दे मिलदिया ध्यान बिखर जांदा। नवी नवी कार चलानी सीखनी है, बड़ी एकाग्रता। किसे गुरु पीर पैगंबर नूं आखण दी लोड़ नहीं, बे एकाग्रता, ध्यान जोड़ो। ध्यान आपे ही जुड़ता है, क्योंकि खतरा है, खतरा है। डर है। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੋ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਟੇਪ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਵਿਖਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। अगर एक दफा प्रभु नाम दे च ध्यान जुड़ जाए, ध्यान कदी बिखरदा नहीं। क्यों? ज्ञान कदी पूरा नहीं आता। परमात्मा असीम है और इस सीमित जिंदगी दे च उस असीम नु पूर्ण तौर ते जानना औखा है। तो ज्ञान रोज रोज वद्दा जा रहा है, ध्यान हटदा ही नहीं। कबीर गल पकड़ दे चाहिए होवेगी। जगत दे किसी भी काम दे च ध्यान जोड़िए, ध्यान जद ज्ञान बन जाता है ध्यान बिखर जाता है। प्रभु नाम दे च ध्यान जुड़े कदी बिखरदा नहीं, कदी भी नहीं। कारण ज्ञान कदी पूरा होता ही नहीं। मैं देख के हैरान हाँ, कोई 50 टीके ने जपजी साहब ने, एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खाता। ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 13-14 ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ 50 ਟੀਕੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 16 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ 50 ਟੀਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਭ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਸਦਾ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਤਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇ ਸੀ, ਵਰਣਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਏ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਗਰ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਡੋਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਲੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਰਤ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਸਰਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਭੁੱਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ईश्वर नू भुला के कोई गुणवान नहीं हो सकता। अगर उहदे कोल गुण है नहीं दिखाई देंदे ने, उह सिर्फ कागजी फुल होणगे और कुछ भी नहीं होवेगा। इह वी मैं अर्ज़ करदे हां, तुध चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जी। उहदी याद महा आनंद नू जन्म देंदी है, उहनू भुल जाण नाल सारे आनंद मर जांदे, सारे सुख मर जांदे। उहदी याद अपनी याद भुला देंदी है, तो अपने विच ते दुख है, रोग है, सोग है, ये सब खत्म हो जांदा है, क्योंकि यादां च नहीं आउंदा। कहिंदे ना, रोग मिट गए, सोग मिट गए, मरना मिट गया। तन दे तल ते ना मरना मिटदा है, ना रोग मिटदा है। मन दे तल ते ना चिंतावां मिटदियां, ना सोग मिटदा है। बड़े ध्यान नाल सुन लैणा, पर परमात्मा दी याद दे च परमात्मा ही रह जांदा, अपनी याद ते रहिंदी नहीं, गल खत्म। तो रोग भी मिट गया, सोग भी मिट गया, मरना भी मिट गया, परमात्मा ही परमात्मा, ईश्वर ही ईश्वर। थोड़े जड़े अभ्यासी होणगे, जरूर उहनां दी गल पकड़ दे च आ जाएगी। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जीव। भाई साहब भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि और आत्म रसक भाई साहब भाई नंद लाल, उन्होंने अपनी बाणी च दो सवाल कीते ने और दो सवालों का जवाब भी खुद आप ही थल्ले लिखे है। गम चे बाशद, गम की है, दुख की है। तुसीं सोचोगे ये भी कोई सवाल है, हर मनुख नूं पता है दुख की है। हर मनुख नूं ये ते पता है दुख है, हर मनुख नूं ये नहीं पता दुख क्यों है, दुख क्यों है। गम से बाशद, गम की है। फिर कहिंदे ने चीज तो शादी, शादी लव साडे देश देश आनंद कारज विवाह वास्ते वरतदे ने, जबकि ईरान देश विवाह वास्ते नहीं है। विवाह वास्ते उन्हां कोल दूजा शब्द है निकाह, इस घर देश निकाह है। शादी का अर्थ है खुशी, इं दिल शादस, ये दिल बड़ा खुश है। इं दिल नाशादस, ये नाशाद है, खुश नहीं है। इं खाना है शादी अस, इस घर देश बड़ी खुशी है। शाद का अर्थ खुश, शादी दे अर्थ खुशी, आनंद कारज नहीं है। आनंद कारज विवाह वास्ते उन्हां कोल दूजा शब्द है निकाह। पर साडे देश विच मुगलां दे लंबे दौर हकूमत ने ये अल्फाज ते सानू दे दिते, पर चलदे चलदे अल्फाज अपने अर्थ बदल गए। नंद लाल पिछों गजनी तो आए सन, अफगानिस्तान दे सन, मादरी जबान भी परशियन सी। वो अपने अंदाज कहिंदे ने चीज से शादी खुशी की है, गम चे बाशद गम की है। भाई साहब आप ही दसते ने, थले आप ही लिखते ने, गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। सिर्फ परमात्मा नु भूल जाना ही दुख है, और कोई दुख नहीं। और ये इको ही दुख सारे दुखां नूं जन्म लैंदा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सबे रो। ते इक्को ही दुख सारे दुखां नूं जन्म लैंदा। गम चे बाशद गफलत अज याद ए खुदा, चीज ते शादी याद आबा मुंतहा। वो जो ला इंतहा परमात्मा है, उदी याद ही महा आनंद है, सुख है। उन्हों भूल जाना ही महा दुख है। दुनिया भर दे अवतारी पुरुषा ने किया याद करो, चेते करो, सिमरन करो। मन ओदा सिमरन करदा है, मन जिस तों प्रभावित होवे। मन उसकी मंग करदा है, मन जिस तों प्रभावित होवे। मनुख उसे भी प्राप्ति वास्ते समा कटदा है जिस तों प्रभावित होवे। मन जिस तों प्रभावित नहीं, मन नहीं याद करता। मन जिस तो प्रभावित नहीं मन उसकी मंग भी नहीं करता। मन जिस तो प्रभावित नहीं उसकी प्राप्ति वास्ते समा कढ़ने की की लोड़ है। 24 घंटे मनुख धन वास्ते समा कढ़ सकता है, 24 घंटे च 1 घंटा भी प्रभु वास्ते नहीं है। मनुख संसार के प्रभाव हेठ जी रहा है, निरंकार के प्रभाव हेठ नहीं। परिवार के प्रभाव हेठ जी रहा है, करतार के प्रभाव हेठ नहीं। देखो परिवार को याद करना होवे ते वाजा वजाण की लोड़ है, तबला खड़कान की लोड़ है, या मैनू एक कथा की लोड़ है, फिलसफा गोटन की लोड़ है। परिवार की याद से आप आती, मित्र की याद, पुत्र की याद, पति की याद, पत्नी की याद, भरावान की याद से आपे आती है। कोई वाजा वजाण की लोड़ नहीं, कोई फिलसफा गोटन की लोड़ नहीं। धन संपदा की याद अपने आप आती है, किसी को प्रेरणा लैण की लोड़ नहीं। पर परमात्मा की याद, वह याद आवे पाठ करो, पूजा करो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, कीर्तन सुनो, कीर्तन करो, कथा सुनो, कथा करो। पर मैं एक गल दावे नाल कहना, ये सब कुछ करदिया भी वो याद नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। मन जिस तो प्रभावित नहीं मन उसनु याद नहीं करता, मन जिस तो प्रभावित नहीं मन उसकी मंग भी नहीं करता। मन जिस तो प्रभावित नहीं वो लाई मनुख कोई समा नहीं है, कोई वक्त नहीं। ये सत्संग, ये कथा कीर्तन, ये गुरबाणी विचार, ये सतगुरु के अगम्य शब्द मैं इस वास्ते ने किधरे सुनदियां सुनदियां मन परमात्मा तो प्रभावित हो जाए। सत्संग कीता या उस दिन सफल समझ लो जिस दिन मन परमात्मा तो प्रभावित हो जाए। जिन्ने चिर तक प्रभावित नहीं होया, सतसंगी होने का यतन तो करता पे है, सत नाल संग नहीं होया। सतसंग कहने ना सत ते परमात्मा है, उहदे नाल संग हो जाए तो सतसंगी। 10,000 मनुख किधरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बैठे मन कह सकते हैं कोई कद सतसंगी होगा, बाकी सतसंगी होने का यतन पे करते, कोशिश पे करते। सतसंगी होना कोई बच्चियां भी खेल नहीं है, ये भी मैं सत नाल संग हो गया, परमात्मा नाल संग हो गया। माड़े मोटे किधरे मिनिस्टर चौधरी नाल बंदे दा संग हो जाए तो बंदे दे पैर जमीन ते नहीं टिकदे। वो सत जो महाशक्ति है जगत दा करता है, उहदे नाल संग हो जाए मनुख ते माला माल हो जाए। सतसंगी रोज रोज सतसंग विच आउणा है, सत की गल सुननी है, कीर्तन राही, कथा राही, पाठ करना है, जप करना है, ताकि किसी दिन मन सत तो प्रभावित हो जाए। जिस दिन प्रभावित हो जाए तो कबीर कहते ने विसरत नाही मन ते हरी, अब ए प्रीत महापरबल भई बिखम ना जाए गरी। हुण इतनी परबल प्रीत पैदा हो गई है, प्रभु बोलदा ही ने। मनुख ने प्रभु नु भुलाया है, गवाया नहीं, गवा नहीं सकता। क्यों? जन्म जीवन मरण सब परमात्मा दे चेते व्यापक है, वो तो एक शक्ति है। इस उत्ते जिहड़ा मैं एक उदाहरण देना हुंदा वो भी दे दिया, छेती समाप्ति करिए। एक मछली अपने जन्म स्थान तो हजारा मील दूर जा सकती है, अक्सर हजारा मील दूर चली जाती है। एक मछली अपने परिवार तो हजारा मील दूर जा सकती है, और अक्सर वाकई वह हजारा मील दूर चली जाती है। एक मछली अपने इलाके तो बहुत दूर जा सकती है, और अक्सर बहुत दूर चली जाती है। लख भी यतन करे मछली पानी तो दूर नहीं जा सकती, जिथे जाएगी पानी ते है। भावे प्रशांत महासागर च होवे, भावें हिंद महासागर दे चोवे, भावें अरब की खाड़ी दे चोवे, ते भावें अटलांटिक दे चोवे, सागर ते सारा एको ही है। दूर जा सकती है, पानी तो दूर नहीं जा सकती, परिवार तो दूर जा सकती है, जन्म स्थान तो दूर जा सकती है, अपने इलाके तो दूर जा सकती है, सागर तो दूर नहीं जा सकती। मनुख ये भी अपने वतन तो दूर जा सकता है, और बेशतर कई लोग अपने वतन तो बहुत दूर चले जाते हैं। एक मनुख अपने जन्म स्थान तो बहुत दूर जा सकता है और अक्सर कई चले जाते हैं। एक मनुख अपने परिवार तो बहुत दूर जा सकता है और कई चले जाते ने, लख भी यतन करे मनुख निरंकार तो दूर नहीं जा सकता। उसे देवी से जीवन मरण है, जन्म है, जिमें मछली का जन्म जीवन मरण सागर दे है, सब कुछ तो परमात्मा दे है। उसनों गवाया नहीं, भुलाया है, भुलिया क्यों है, दिखाई नहीं देता। दिखाई क्यों नहीं देता? दूरी होने करके नहीं दिखाई, इस वास्ते ही नहीं देता, नेड़े नहीं है, बहुत नेड़े है। दूर हो गए तो शायद दूरबीन नाल वेख लीए, बहुत नेड़े है। जैसे मैं अखां देते तस्वीर रख लवा नहीं देख सकता, देखने वास्ते कुछ दूरी चाहिए। जैसे मैं अखां देते किताब रख लवा अखर नहीं दिखाई देंगे, अखर दिसन कोई थोड़ी दूरी चाहिए। अख दे कोई रड़क पै जाती है, असी दूसरे नूं कहने जरा देख मेरी अख दे की पै गए, हद हो गई। अखां सूरज चंद तारियां नूं देखदियां, पहाड़ां नूं देखदियां, मनुखां दी भेड़ नूं देखदियां, एक निक्की जिही रड़क अख दे पै गई, अख नूं नहीं दिखाई देंदी। क्यों? बहुत नेड़े, बहुत नेड़े, बहुत नेड़े। अख दे रड़क पै गई है, अख देखण विच असमर्थ है, कि जिहड़ा अखां दे विच ही रमिया होया, रोम रोम दे विच रमिया होया, ये अखां उस नूं किस तरह वेखणगी? इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते, नानक से अखणिया बेअन जिन्हें दिसंदो मां पेरी, उन्हों अनुभव किया जा सकता है। भाई साहब भाई नंद लाल ने ये अनुभव की अखी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो मंग की थी, या इलाही चश्मे बीना ए मेरे, इनू तीजी अख भी कहते हैं, तीजा नेत्र। साढ़े हिंदू रिथे विचकार तिलक लाते हैं, कहते अनुभव नेत्र इत ही है, इत ही प्रकाश होंगे। भाई साहब भाई नंद लाल कहें, या इलाही चश्मे बीना ए बीरे, हे मेरे इलाही, हे मेरे गुरु, वो अखा दे जेदे नाल तू दिखाई दे, मैं तेनू वेख सका। क्या गुरु गोबिंद सिंह उसनु दिखाई नहीं देंदे सन? दिखाई देंदे सन, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की ने, की नूर ने, की चानण ने, इनू वेखण वास्ते ते अनुभव दी अख चाहिए। इन्हां अखां नाल खेड नहीं बनदी। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर शरम अद इश्के सौदा ए बिदे, मेरे सिर विच ओ प्यार दे, कि एक दफा दुनिया कह दे नंद लाल पागल हो गया, सुदाई हो गया। महाराज अजय लोकी मैनू ज्ञानी कहंदे ने, कवि कहंदे ने, शायर कहंदे ने, मैनू किसे ने पागल नहीं आखिया। कारण पागल अकल तो थले जीवदा है, समाज तो थले जीवदा है, समाज उसते तरस भी खांदा है। संत ते भगत अकल तो उपर उठता है, समाज तो उपर उठ जांदा है, वो भी समाज दे तल ते नहीं जीवदा। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। इहदे नाल समाज नूं जरा चोट लगदी है, हंकार नूं चोट लगदी है समाज दे। तो एक समाज कतई इतना पागल का विरोधी नहीं आता जितना संत का विरोधी आता है। छोटी दे संत सिंघासना ते नहीं ने, उते तत्ती तवी ते ने, या सूली ते लटके हुए ने, या जहर का प्याला पी रहे ने, या दीवारां दे चिणे जा रहे ने, या दिल्ली दे चांदनी चौंक दे अपना गला कटवा रहे ने। समाज ने कबूल नहीं किया। संत जो समाज तो उपर उठ गया, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, अकल तो उपर उठ गया। जो किसनो कहंदे ने सरहद अकल से गुजरे तब पहुंचे, कहंदे अकल दी सरहद टप के जद मैं अगे गया तां रब दे दर तक पहुंचे। इनू डॉक्टर मुहम्मद इकबाल बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करदा है, तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ये अकल दा दीवा सिर्फ रस्ते दा चानना पे है, मंजिल नहीं है। अगे लंग अगे लंग। और इनू अमीर मिनाई बड़े आलमाना ढंग नाल अपना ढंग नाल बयान कर रहे हैं। कहिंदे किससे पता पूछें मंजिले जाना, ऐ खुदा मैं तेरा पता किस कोल पूछा, कौन दसे। किससे पता पूछें मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिदे कोल तेरी खबर थी वो ते कुछ कहने जोगा नहीं थी, ते जिड़े बहुता कहिंदे पैने ना कोल खबर है कोई नहीं, है कोई नहीं। जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जगत ने जो कुछ किया वो आप कहते ने, कोई कहे भूतना को कहे बेता, कोई कहे आदमी नानक विचारा पाया दीवाना, शाह का नानक बौराना, सारे कहते पेने ते पागल हो गए।
1: थैंक यू फॉर लिसनिंग टू CISK सिख रेडियो 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

के संदेह हो जाए, बिना मंगन तो हो जाए, बिना अरदास तो बेनती तो हो जाए, अपने आप हो जाए, ताकि तुसी बच्चे विखे होंगे जेड़े बचपन तो ही बहुत सुचजे, बहुत चंगे, बहुत सोहने, बड़े ही पागां वाले हुए हैं। इन्हां बच्चों विचों कभी कभी कोई ऐसे बच्चे भी हुए हैं जिन्होंने बचपन में ही सतगुरां नूं बेनती की।

मैल गई मन निर्मल हुआ अमृत सर तीर्थ नाए। सज्जन मिले सज्जना सच्चे शब्द सुभाए, कर ही प्रचा पाया ज्योति ज्योत मिलाए। पाखंड जमकाल ना तोड़े ले जा सिंह पत गवाए, नानक नाम रते से उबरे सच्चे क्यों निवलाए। पौड़ी तिप जाए बहु सत्संगति, जिसे हर का हर नाम बिलोई है। सहजे ही हर नाम ले हो हर पत न कोई है। नित जप्यो हर हर दिन रात, हर दरगह तोई है। तो पाए पूरा सतगुरु, जिस गुर मस्तक लीलाप लिखोई है। इस गुर को सब नमस्कार करो, जिन हर की हर गाल गलोई है।

क्या विछड़े जिना दूजे पाए प्यार, मन मुक्त की दोस्ती छोड़ रहा दिन चार, किस परीति टूटदी विलम न हो गई, इस दोस्ती चलन विकार। जिना अंदर सच्चे का पौ नाही, नाम न करे प्यार, नानक तिन क्यों क्या कीते दोस्ती, जे आप तुलाए करतार। महला तीजा, इक सदा इक तै रंग रहे, तिन कै हो सब बलिहारे जाओ, तन मन तन अर्पी तिन को निव निव लागो पाए, तिन मिलिया मन संतोषी है, कृष्णा पुख सब जाए, नानक नाम रते सुखिए सदा, सच्चे चू निव लाए पौड़ी। इस गुर को हो वारिया, जिन हर की हर कथा

अमर शीतल जे मिले फिर जले ना दूजी वार। नानक बिन नावे निरपौ को नहीं, जिचर शब्द ना करे विचार। महला तीजा, देखी अगर ना बुझाई चिंता है मन माहे, वर्मी मारी साप ना मरे है क्यों निगुरे कर्म कमाए। सतगुरु दाता सेवी है शब्द वसे मन आए, मन तन शीतल शांत हुए कृष्णा अग्न बुझाए। सुखा सिर सदा सुख होए, जां विचों आप गवाए। गुरमुख उदासी सो करे जे सच रह लिवलाए। चिंता मूल न होवे हर नाम रजा अगाए। नानक नाम बिना नह छूटिए हों मैं पचें पचाए। पौड़ी जिन्नी हर हर नाम से

विसर गए सब दुखा, ते संत पले गुरसिख है, जिन नाही चिंत पराई चुका। तान तान सिना का गुरु है, जिस अमृत फल हर लागे मुखा। श्लोक महला तीजा। कल में जम जंदार है हुक्मे कार कमाए, गुर आके से उगरे मन मुखा देख जाए। जम काले वस जग बांधया, तिसदा करू ना कोए। जिन जम कीता सोते भी है, गुरमुख दुख न होए। नाम गुरमुख जम

आए पौड़ी जिन जग जीवन उपदेशया तिस गुर को हौसला कुमाया तिस गुर को हो खनिए जिन मद तूदन हर नाम सुनाया तिस गुर को हो वारने जिन हो मैं दित सब रोग गवाया तिस सतगुर को वड पुन है जिन अवगुण कट गुणी समझाया सो सतगुर तिन को पेतया जिन के मुख मस्तक पाग लिख पाया। श्लोक महला तीजा भगत करे मर जीवने गुरुमुख भगत सदा होए ऊना को सुर भगत खजाना बसिया मेघ ना सके कोई गुण निधान मन पाया एक को सच्चा सोए नानक गुरुमुख मिल रहे फिर भी थोड़ा करे ना होए। महला तीजा सतगुर की सेव ना कीनिया क्या ओ करे विचार सब जय सार न जाने बिकूला गावार अज्ञानी अंध बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार।

पौड़ी। तू करता सब कुछ जानदा, सब जीव तुम्हारे, जिस तू पावे तिस तू मेल ले, क्या जंत विचारे। तू करण कारण समर्थ है, सच सृजन हारे, जिस तू मेले प्यारिया तो तुद मिले गुरमुख विचारे। हौं बलिहारी सतगुर अपने, जिन मेरा हर अलख लखारे।

जो गुरमुख नाम से आए दे तुनी चढ़ी स्वगन वनी। श्लोक महला तीजा, मन मुख कायर का रूप है, गिन ना रहे नक ना है, अंगन संदे व्याप्या सुख ने भी सुख ना है। नानक गुरमुख होवे ता उबरे नाहे ता बदे दुख सहाए। महला तीजा, गुरमुख सदा दर सोए, गुर का शब्द कमाए, अंतर सांस सदा सुख, दर सच्चे शोभा पाए। नानक गुरमुख हर नाम पाया, सहजे सच कमाए। पौड़ी, गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाए, गुरमुख जनक हर नाम लिव लाए, गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए। बिन गुर हर नाम न किने पाया मेरे भाई, गुरमुख हर भगत हर आप लहाए। श्लोक महला तीजा, सतगुरु

मिलिया प्रभु आए, नानक गुरु प्रसाद उबरे, हमें शब्द जलाए पौड़ी। हर नाम हमारा प्रभु अविगत अगोचर अविनाशी पुरख विधाता, हर नाम हम त्रेवे हैं, हर नाम हम पूजे हैं, हर नाम में ही मन राता, हर नाम में जेवड कोई अवर न पूजे, हर नामो अंत दाता, हर नाम दिया गुरु परोपकारी, तन तन गुरु का पिता माता, हम सतगुरु अपने को सदा नमस्कारी, जित मिले हर नाम में जाता, लोक महला तीजा, गुरुमुख के ना कीनिया।

न चुकई नाम न लगे प्यार एक आपे बख्श मिलायन दुबदा तज विकार नानक एक दर्शन देख मर मिले सतगुरु हे प्यार महला तीजा सतगुरु ना सेवियो मूरख अंध गवार दूजे पाए बहुत दुख लागा जलता करे पुकार जिन कारण गुरु विसारिया सेना उपकरे अंकी वार नानक गुरमति।

चौथ से माए बाप को बेटा निका ससुरे चतुर्जुवाई बाल कन्या को बाप प्यारा पाई को अत भाई हुकुम पया बार कल छोड़िया छिन में पई पर आई नाम दान स्नान न मनमुख तित तन तूड़ तुमाई मन मानिया नाम सखाई पाए परो गुर के बलिहारे जिन साची बूझ बुझाई रहाओ जग क्यों झूठ प्रीत मन बेदिया जन क्यों वाद रचाई माया मगन एनच मग जो है नाम ना लेवे मरे दिखाई गंदन वैन रता हितकारी शब्द सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं बेदिया मन मुख पत गवाई साध सभा में सहज ना चातिया जेबा रस नहीं राई मन तन तन अपना कर जानिया दर की खबर ना पाई अखी मीत चलिया अंधियारा कर दर्द से न पाई जम दर बाधा ठौर ना पावे अपना किया कमाई।

पूरन जो समाई नानक गुरविन परम न पागै सच नाम वडियाई। सोच महला पहला दुत के

ना जानिया मैं मूरख किस दी गए प्रणवत नारद सुन मेरे साहेबा डुबदा पत्थर ली जाए सूरत मैला पहला हूँ पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाप परम रसनाते ठाकुर शरण तुम्हारी करता तू मैं मान माने मान महत नाम तन पल्ले साचे सब समाने रहाओ तू पूरा हम ऊरे होते तू गोरा हम होरे तुझ ही मन राते ऐन प्रभाते हर रसना जप मन रे तुम साचे हम तुम ही राते शब्द पेद फुन साचे ऐन स्नान रते से सूचे मर्दन में से काचे अवर न दिशे किस साला ही तिसे शरीक न कोई प्रणवत नानक दासन दासा गुरुमत जानिया सोई सूरत महला पहला अलख अपार अगम अगोचर नात काल न कर्मा जात अजात अजोनी संभो नात पाव न परमा साचे प्यार बिचों कुर्बान है नात रूप वरन नहीं देखिया साचे शब्द निशान रहाओ ना किस मात पिता सुख बंधक ना किस काम ना नारी अकुल निरंजन अपर परम पर सगली जोत तुम्हारी कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया कट कट जोत सवाई वज्र कपाट मुक्ते गुरमति निरपय ताड़ी लाई जंत उपाय काल सृजनता वत गति जुगत सवाई सतगुरु से सदास पावे सूते शब्द कमाई सूचे पांडे साज समावे विरले सूचाचारी संते को परम संत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सूरत महला पहला ज्यों मीना बिन पानी में क्यों साकत मरे प्यास

होए अखर तीरथ मजना गुर दर्श प्राप्त होए। ज्यो जोगी जत बहारा तप नाही सब संतोख क्यों नामे बिन देहरी जम मारे अंतर दोख। सासत प्रेम न पाये हर पाये सतगुरु भाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिख समाए। सूरत महला पहला तू प्रभदाता दान हत पूरा हम सारे से सारे जियो। मैं क्या मांगो किस फिर ना रहाई हर जीजे नाम प्यारी जियो। काट काट रव रहा बनवारी जल तल मई अल गुप्तो वरत गुर सब जी देख निहारी जियो। रहाओ मर्त प्याल अकाल

जन नानक सब सलाही जियो। पुरुष मैला पहला पंच पदे अपना कर मूसक राख न साके की पर कर जोहन लागा कर दर राखे जे रस चाखे जो गुरुमुख सेवक लागा मन रे समझ कवन मत लागा

जिन ए रख होया जा साकत दुर्मत लागा मन का जियो पवन पद देही देही मैं दियो समागा जे तू देहे ता हर रस गाई मन तृप्त है हर लिव लागा साध संगत में हर रस पाये गुर मिले जम पो पागा नानक राम नाम जप गुर।

आप गवाई भगतां का कारज हर आनंद है। आंदन हर गुण गाई शब्द रते सदा इक रंगी हर त्यों रहे समाई। हर जियो साची नजर तुम्हारी अपने दासा नो कृपा कर प्यारे दासो पैज हमारी राह। सब सराही सदा हो जीवा गुरमती पौ पागा मेरा प्रभ साचा अपवाल्यो गुर सेविया चित लागा साचा सब सची।

अचिंत हर मन वसाया, मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों परम सुखाया। हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, को पाए गुरु विचारा। हर से रंग राता सबदे माता, होमे तरे विकारा। नानक नाम रता एक रंगी, शब्द सवार अनहारा। सूरज महला तीजा, हर जियो तुदरों सदा तलाही प्यारे। जिकर तट अंतर है सासा, इस पाले खिन वितरे तू स्वामी। जानो वर्ष पचासा, हम मूड मुगद सदा से पाई। गुर कै शब्द प्रगासा, हर जियो तुम आपे दियो बुझाए। हर जियो तुरितो आया, सद ही तेरे नाम वितो बल जाए। रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले, पाई शब्दे ही मुक्त पाई। शब्दे मन तन निर्मल हुआ, हर वस्या मन आए। शब्द गुरुदाता जित मन राता, हर स्यों रहा समाई। शब्द ना जाने से अन्य बोले, से कित आए संसारा। हर रस ना पाया, बिरसा जन्म गवाया। जम्मे वारो वारा, बिस्टा के कीड़े बिस्टा माए समाने। मन मुख मुगद गुबारा,

मन मेरे हर जोसला समाल, अंतकाल तेरा बेली होवे, सदा निर्भय तेरे नाल रहाओ। दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावे, ना बूझे विचारे, निंदा दुष्टि से किन फल पाया, हर नाश से नखे बिदारे। प्रहलाद जन सद हर गुण गावे, हर जियो ले उबारे, आप को बहु भला कर जाने, मनमुख मत न काई, साधु जन की निंदा व्यापे, जाखन जन्म गवाई, राम नाम कदे चेते नाही, अंत गए पछताई, सफल जन्म भगता।

ऐसे बूझे तो आप पछाणे हर प्रभ है तेरा। सतगुरु सदा दयाल है पाई बिन पागा क्या पाई है। एक नजर कर वेख है सब ऊपर जिहा पाओ तिहा फल पाई है। नानक नाम वसै मन अंतर विचों आप गवाई है। सोरठ मैला तीजा चौथुके सच्ची भगत सतगुर के होवे सच्ची हृदय बाणी। सतगुर तेरे सदा सुख पाए हों मैं सबत समाणी बिन गुर साचे भगत न हो।

सुनाई अपनी नजर करे पत राखे हर नामो देव दयाई रहाओ पूरे गुर से आप पछाता सबद सच्चा विचारा हृदय जल जीवन सद वस्या तज काम क्रोध अंकारा सदा हजूर रविया सब साई हृदय नामा पारा जुग जुग बाणी सबद पछाणी नाम मीठा मने प्यारा सतगुर सेव जिन नाम पछाता

तेरी ढूंढ कीती असफल होया तीर्थां ते गया जां पानी दे जल दे किनारे सन उन्दे विच इश्नान करके लोग प्राप्ति महसूस करदे सन समझ लैंदे सन जां पखान सन भाव पत्थरां दे बुत सन ओनू भोग लुआ उन्दे गलां विच हार पाई लोग अपना मकसद पूरा हो गया समझ लैंदे सन।

भाने जो चले भाई बिछड़ जो खावे लगे बर्बादी इस कर लिए जे तू अपनी चॉइस वर्तने गुरु की चॉइस में तू कहने गुरु मेरे सामने बराटी रख दे कई रब खड़े कर दे कई भगवान खड़े कर दे मैं उन्हें चो चुना पता नहीं उनका नतीजा कि साढ़े भी फायदा पैदा होगा असं गुरु की वरायटी बनाती बच्चों समझाने लग पाए साढ़े दस गुरु की यह भी गलती गुरु तो आख रहे मेरा इको गुरु है एक बाणी एक गुर एक शब्द विचार असं आख दिता साढ़े दस गुरु आखता काया दस हो सकती है गुरु।

गुरु ने यह महसूस किया। इसलिए अवतारवाद के सारे घेरे बड़ी प्रचंडता नाल, बड़ी शक्ति नाल, दलील नाल सामने रख के एक पासे लपेट के रखा, तो मनुख नु एक रब न दिया। कुछ लोग अज भी बैठे ने, मैं ना चाहते हुए मैं बहुत पुरानी गल नहीं करता, अज भी वो पुराने समय वाले मुगालते ते भरम नवे नवे भगवान पैदा कर रहे। तुम हैरान होवोगे, पंचानवी का संडे का दिन है, एतवार का दिन है, ये 5-10 मिनट ज्यादा हो जाए। मैं तुम अज की हड्डी तीसरी सुनाना चाहना ताकि सानू पता लग जाए गुरु ने साडे ते कैसी रहमत की है इस अवतारवाद में कढ़न। मैं बहुत पुरानी गल नहीं करता, तुम आखोगे खोरे कोई किसी की पढ़ी पढ़ाई कहानी है, आज सिर्फ 3-4 महीने पुरानी गल है, अज भी हो रही है। जेडे वीर कोई कनेडा रहने वाला वीर बैठा हो जाते आते हूं उन्होंने पता चल जाए, सिर्फ 4 महीने पुरानी गल है, उसे एक नवा रब पैदा होया, ना उनका नरेंद्र गरेवाल से ना उन्हें वही रखा हुआ, अपनी जगह लैके बड़ी बड़ी उन्हें डेरा बना लिया, अपने आप नू भगवान रब डिकलेयर कर दिता। तो तुम हैरान हो गए कोई रब डिकलेयर करे सही, लोग मगर के एवं लग पे पछाणन की लोड़ ही, बड़े लोग मगर लग गए, बड़े लोग मगर लग गए। और हर तुम्हें एक पास के श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश, मेरे को वीडियो टेप पी है, जो हालात बिगड़े तो वीडियो टेप करके सिंगा ने घर घर पहुंचाई भी, आज उ अवज्ञा हो रही है, गुरु साहब की बेअदबी हो रही है, सिंगो जागो, एक पास 4 महीने सिर्फ तुम गल है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कोल उधर पिट लत्तां लंबिया करके बैठा है, उनके चेले यह भी नहीं कि साधारण अमृतधारी, उपरों दी कृपाना पाई हुई बीबिया ने सीट से दस्तारा सजाई हुई, मेरे को वीडियो पेज दिखा सकते, मैं इसलिए साझी कर रहा ताकि सानू अजोके हालात का पता लगे, आशा की बार समझ की सानू क्यों लोड़ है। बीबिया ने दस्तारा सजाई हुई प्रकाश बहरे, श्री गुरु ग्रंथ साहब नू नमस्कार कोई नहीं कर रहा, सारे आके दंडौत करके मत्थे टेक रहे ने उस मनुख दे अगे, कोई पिट करके श्री गुरु ग्रंथ साहब वाल बैठे ने। उनकी जबान की बोली तो मैं थोड़े साझी नहीं कर सकता, तुम टेप में सुन सकते जो जो लफज वो आख रहे गुरु नानक प्रति रब प्रति। ऐसे मनुख नू भी लोग भगवान मन बैठे, भावें कुछ ही सही रब मन बैठे। इथों तक यह सारी तुम एक नहीं सिर्फ टेप में ही, सारी चीज प्रेस में आई हुई है, 4 महीने की तुम पहली उतों के अखबार कढ़ा लो, एक चीज प्रेस में आई हुई है। एक इसका नाम है वो अपने एक चेले में जरा सिख रूप में है, अमृतधारी रूप में है, उन्होंने कहता है कि पिछले जन्म तू मेरी पत्नी ले गया था, इसलिए तेन हूं मेरे दरबार से आना पे, तेरी मुक्ति नहीं होनी जिनी देर तू अपनी पत्नी मैनू नहीं देगा। यह पुरानी गल नहीं, जो सिर्फ अज के युग अंदर पढ़े लिखे युग में ऐसे भगवान पैदा हो जाए, क्यों लौड़ है श्री असल जी वारू समझ। कहता पत्नी मैनू देगा तां तेरी मुक्ति होगी, और ऐसा होया, उस नौजवान सिख ने अपनी नौजवान पत्नी उस 70-60 बरे दे बजुर्ग भगवान नू दे दी, और डिक्लेयर कर दिता कि आज तो मेरी पत्नी नहीं उनकी पत्नी। उनके रिश्तेदार मित्र दोस्त रोकने रहे, सब ने रौला पैना, अब तुम कौन होने हो, मेरा तो भगवान का, मेरा तो रब का, मेरा संबंध है, तुम मेरे बच्चे, मैं जो मर्जी पेश करा। ये 4 महीने पहला होया, अखीर जदों असह हो गई गल, रोज सामने आने लग पी, वीडियो टेपा बन गई, वीडियो टेपा घर घर सिंघा ने पहुंचाईया गई, सिंघा का खून खोलिया, यह कुछ अवग्या जरा गुरु नानक का सिख है, जरा श्री गुरु ग्रंथ साहब का सिख है, वह योजी अवग्या कि देर देखेगा। रौला पैन से सिंघा ने चैलेंज किया, उनके कोर कोई जो कोशिश न चली, तो उन्हें आख्या चलो, सिंघा ने आख्या तू दरबार में पेश हो, दिखी गुरु

प्रभु लीला ये प्रभु की खेल जिंदे विच हम एक पात्र वांगू कम कर रहे हैं कड़ियां दे रूप विच पैरां दे रूप विच

चंद सूर्य अवतार। तो चंद सूर्य कौन ने? राम दे ते कृष्ण दे बड़े बड़े रे। कृष्ण चंद्रमा दी वंश विचों बड़ी देर बाद पैदा होने, चंद्रमा तो उसको बहुत पहले आंदा, इसलिए उन्होंने चंद्रवंशी आखते। कृष्ण कौन ने? चंद्रवंशी। ते सूरज जेड़ा वो राम दा वड्डा वडेरा है, बहुत पहला है। जो राम पैदा भी, सूरज उदों भी सी, राम का त्रेते भी पैदा, सूरज उदों भी सी, उसको पहला भी। ते उनकी वंश विच राजा राम पैदा हुए, इसलिए उन्होंने सूरज वंशी आखते। हम चंद्रमा के सूरज के ने रामकृष्ण के बड़े बड़े जिन्हें वंश पैदा हुए, वो चंद्रवंशी ने, राम सूरज वंशी ने, तो सारी जानते वो भी मनते। तो गुरु कहने जो मैं उनकी खेड में सूरज के चंद्रमा को खेडता देखना, उनकी लीला में एक पात्र बन के उनके पैर में काम करता, पैर में सूरज, पैर में चंद, उनकी खेड में उनके हुक्म में काम करता देखना, तो मैं ऐसी बड़ी खेड जिंदे च वड्डे वड्डे रामचंद्र जी दे ते कृष्ण जी दे हुंदे खेड खेड रहे, उन्हें मैं उनकी लीला छड़ के कोई होर लीला देखा?

माल धन बर्तन सर्व जंजाल, सारियों की लीला जिन्ना पदार्थ है जिन्हें जंजाल, दुनिया में जंजाल भी नहीं खुशहाल भी नहीं। गुरु कहते मैं उनकी इस लीला में वह भी देखना कि जेडे लोग प्रभु ना पछाण के ज्ञान विहूने हुए अपने जीवन नु बर्बाद कर रहे हैं।

लोग मिला देख ले, लोग उन्हें देख ले, देख देख के हास रहे, उन्होंने कोई ज्ञान नहीं नसीब हो रहा, केवल हास के घर चले जाते, उन्होंने मनोरंजन ही है वो लीला और नाटक की जिंदगी का जीवन का मनोरंजन ही बन गया इसको अगे कुछ।

उन्होंने उस सिखी ने गुरु की सिक्ख्या ले गुरु को समझिया रब की है वो नकल में नहीं पैंता उन्हें असल में समझने की कोशिश की सिखी सिक्ख्या गुरु विचार क्योंकि गुरु विचार केवल एक परमात्मा नु दर्शा रहा नगरी कर्म लंघाए पार नजर रहमत करके ए कर्म दिते के किनारा मिल गया मंजिल मिल गई कहन लगे दूजे पासे ओ लोग सन जेड़े केवल रास्ता पा के नचदे घूम के रिया फेरिया लेंदे समझदे सन खरे रब मिल जाएगा इसे नाल रब प्रसन्न परवान चढ़ जाएगा गुरु कहने वो पड़ेगा जे फेरिये लैन नाल चक्कर कढ़न नाल एक अखाड़ा बना के उनके कोई नाटक खेड़दे गीत गाँवद नचद टपद फेरिया लैन नाल ही रब के दर से प्रवान हों ते मैं तेन बड़ी वीडी लिस्ट देना तू प्रवान चाड़ी नहीं सकता कहने लगे कोलू तेरे नाल ज्यादा फेरिया लैंदा चरखा ज्यादा घूमता है गुरु ने लिस्ट दे कोलू भी घूमता है चरखा भी घूमता आटे पीने वाली चक्की का पुड़ भी घूमता है कुमार ने कल ला दिन बर्तन घटना ना उनका चक भी घूमता है कोलू चरखा चक्की चक रेगिस्तान के इलाके गर्मियों के दिहाड़े वाव रोले बड़े उठते फलों वाव रोले बड़े और इन्नी तेजी हवा का एक घूमन घेरी बन जाती है उनके फसलियां निकलना भी औखा हो जाता फल विरोले बहुत आनंद फिर कहने लगे आ बच्चे जिस लाटू नाल खेडते हैं लाटू चलाते लाटू भी बड़ा घूमता है जिस मधानी नाल स्वाणी दही रिड़कती है ना वो मधानी भी उस चाटी में बड़ी घूमती है तेरे नाल कुछ ज्यादा घूमती है फिर तो वह प्रमाण चढ़ जानी चाहिए रब न तू क्यों चढ़ेगा तू तो घट घूमना लाटू मधानिया अन्न गा किसान जदों अन्न का अनाज का गाह पाता है ना हूं तो समा नहीं रहा पुराने जिमीदार जानते गाह पाना की हों जिने सिटे जिन्ना लान खिलारे ना उनके उत्ते सारा दिन बलदा ने घूमता रहना उन्होंने पैरों के दबाव नाल सिटे फिसने तूड़ी वक् हो जानी दाने वक् हो जाने कहते सर अन्न गाह अन्न का गाह पा लाटू मधानिया अन्न गा पंखी भाद लैंड ना सा आसमान से उड़ारियां उड़न वाले पंखी भी बड़े घूमते जिन्हों सूली चढ़ाया जाता सी सूली भी घुमा दी जाती सूए पैड़ भवाइए जंत इसलिए भलिया जेड़े भन वाले लोग ने जेड़े फेरिया पाने वाले लोग ने जेड़े घूम वाले लोग ने वो तो बेअंत ने तेरे नाल ज्यादा घूमते ने फिर तेरा घूमना प्रवान किवें होगा नानक पाउंदिया गणत ना अंत गुरु कहन लगे ये घूमना जेड़ा है ये फेरिया जीवियां ने यह तो मानो तेरे कर्मां दा फल है कर्मां दा बनिया होया संसार घूमना घेरिया आवन जाने पिया हो इस आवन जाने की घूमन घेरी रब नहीं मिल गया

0: जे अपनी भलाई जानना है, जे अपना भविष्य उजला करना चाहना है, जे अपना लोक परलोक सवारना चाहना है, तो नाउ तेरा निरंकार है ते विश्वास कर, ना लइए नरक ना जाइए ते विश्वास कर। पर एक ख्याल करी फिर गल उथी आ जानी है, होमे नावे नाल विरोध है। ओ नाउ तेरा निरंकार जिहड़ा ना वो अंदर ता ही वसेगा जे आ अगली गल समझ लेंगे। जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई, पुन कर चंगे कर्म कर पर होमे ना कर, क्योंकि होमे नावे नाल विरोध है। दुनिया अंदर चंगे कर्म कर, सब गुना नु ग्रहण कर, किसे दा भला कर, पर होमे ना कर, क्योंकि होमे का उखा जान कोट कर्म करे हो पारे शर्म पावे सगले मिल पारे। संसार की हालत है जे को एक करे चंगे आई मन चित बहुत बफावे। कहने लगे इसलिए मैं तेन एक गल समझाना चाहना,
1: जे लोड़े चंगा अपना कर पुन्नो नीत सदाए।
0: ए है एक पूंजी मेन सच, चंगे कर्म कर ते उना कर्मा भी मन विच होमे ना कर, निम्रता रख, देख इयों जीवन गुजार, नहीं ते ए संसारिक जीवन जिंदगी मिली हुई दा समा चला जाना है, इनू तू रोक नहीं सकेगा जे चंगे काम नहीं करेगा। जे जरवाना पर हरे जे तुस बुढ़ेपे नू दूर ढकन की कोशिश करेगा किन्नी देर तक, जिन्हें मर्जी इंजेक्शन लवा ले किन्नी देर तक, जरवेज करें भी आई है आएगा। जिस दिन तेरे जीवन के खजाने स्वास्था भी भर के पाई हुई पाई प्रोपी खत्म हो गई, तू चला जाना किसे ने नहीं रहना, फिर तेरे को चांस समा नहीं रहना कि तू की पुन करें उन्होंने किवे संभाली किवे निम्र, जो जीवन गुजारेगा उन्हें चला जाएगा। गुरु कह

रामकली महला तीजा आनंद क्यों का सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माय सतगुरु न पाए सतगुरु का पाया राग रतन परवार पर शब्द गाँव में आए

सतनाम आधार मेरा दिन भुखा सब दुआ खां सुख मने आया सब पूजा सदा कुरबान पिता गुरु विखो जिसिया बदियाया कहे नानक सुनो संतो सबक करो तैयार नाम मेरा आधार हुआ जे कल।

0: दूर दुख रोग संपाती तेरे सुमित की बानी संत साजन बह सबसे सुनते पुनित कहते पवित सतगुर गया बनी बिनवंत नानी गुरचरण लागे बाजे नाटू सुनते पुनित कहते पवित सतगुर गया बनी बिनवंत नानी गुरचरण लागे बाजे नाटू
1: श्लोक पवन।

अमृत शाढ़ बिखर बिखकाही माया मोह परम पूले सुतदार आसों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास

क्यों चल हम मार्ग पंथा, हम अंधले काओ गोर अंचल दी जय, जन नानक चला मिलंथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओ

खाई मन जम का साथ न जाय। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, मन सुरतो का मन बुद्ध, मन सगल गुण की शुद्ध, मन मोह छुटा न खाई मन जम का साथ न जाय। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, मन मार्ग ठाक न पाई, मन पथ से प्रगट जाय, मन मग्न जल बंद, मन धर्म से दिशा बंद।

देखो मन जाने मन कोए, पांच प्रवान पांच प्रधान पंच पावन दुर्गमान पंच सोहे हैं दरगा जान पंचा का गुरु एक ध्यान। जे को कहे करे विचारू करते का करना नाई।

युग युगे कोए भुगत ज्ञान दया भंडारण गड़गड़ बजै नाद आप नाथ नाथी सब जा की हृदय सदैव रसाद संजोग वजूद कर चलावै लिखिया।

तदरबारु तथा सुहन पंच प्रवाण नदरी करम पवन निशान कच पकाई उथ पाए नानक गया जप जाए धर्म खंड गाय धर्म ज्ञान खंड का खो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते गान महेश केते वरमे काट दड़ी है रूप रंग के वेश केतियां करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सद बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश।

ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कूड़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे काढ़ घड़ी है बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहि जी को कहे पिछे पछताए तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़ी है सुरसदां की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जुदमा बल सूर तिन मैं राम रहे भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माही दाके रूप न कथने जाही ना उह मरे न ठगे जाही जिनके राम बस मन माही।

तथा खांडमंडल पर पांडव जी को कथा दांतनांत तथा लो लोकार जीव जीव हुकुम देव देवकार वेख्या विषय कर विचार नानक कथना करड़ा सार।

ोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाशाह नम पूप भूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो तंग शराने नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग नमो ऐसे नमो दंत्र दांत्रंग सदा सचिदानंद सर्वं प्रणाशी रूपे रूपे समाज तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा प्रद करता दूर दर दंगा गंगो घरता परं परं परमेश्वरं प्रोष बालं सदा सर्वदा असिद्ध दाता दयालं अशेदीय पेदीय नामंग कामंग समाज सुब्राजी समाज दासदामंग धीरा जूर जा श्रीसंग जले हैं सले हैं पीता भय हैं प्रभु अजुआ दे सभ्य सैं भुजंग प्रयाद संग अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समाज दीन धान्य नमा स्वंग दरदासी नमा स्वंग परमाती नमा स्वंग गंजे नमा स्वंग पंजे नमा स्वंग काले नमा स्वंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा शाहे नमो महा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सोग रोगे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो

एक पुरख आप रूप अमीकान एक पुरख अवधूत गर्भगंज सर्वजन आज रूप सूत अंगहीन अपंगनाथ मेक पुरख पारू सर्वलायक सर्वकायक सर्वकृत पार सर्वगंता सर्वहंत सर्वदेन पेखो सर्वशास्त्र न जानी।

लोक चौदह के बिख जग जापी जय जापू आदि देव अनाद मूर्त सप सब जय साप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सुर चुस्वयं पवगण पंजनहार कालहीन कलश युगत कल पुरख देश धर्मधाम सुबर्म रैत भूतल कपेश अंगराग नरंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूपमी का नौस्तिक पुरख बतूत गर्भगंज सर्वगंजन आदि रूप सूत अंगहीन अंगनात्म एक पुरख पार सर्वलायक सर्वकायको सर्वको व्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वत्यन पेख सर्वशास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम

करुणालय है, अर्घालय है, कलखंडन है, महमंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्ववारण है, त्रैत के धरण है, जग के कारण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वंकर है, सर्ववास है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, ब्रह्मांड से है, कलखंड से है, परदे पर है, करुणा कर है, अजप अजप है, तप तप है, अकृताकृत है, मृत अमृत है, अमृत अमृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, मृत अमृत है, अकृताकृत है, धरणीद्रत है, अमृता अमृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत धरणीद्रत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत अमृत अमृत है, जपाकृत अमृत अमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वंबर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, भवपंजन है, अरगंजन है, हरपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्मा है, सर्वात्मा है, आत्मवास है, जात के जास है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्रेन्द्रे, नमो अंधकार, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग धाम संग शांत रूपे, नमो परम ततंग ततंग स्वरूपे, सदांग संगे, नमो कले कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्रेन्द्रे नारिंग भूते, अलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आस, नमो भांग भांगे।

संसार की धार बिछैया तो और तो देश में लंद मवासन मातरी जान के मान मलैया गाड़ी गडान को तोड़न हार सुबात नहीं जग चार लवैया साहिब श्री सब को सरनायक जाज का नेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साजर बुद्ध भवैक भगवान जपेंगे जीव जीव जीव यदि जल में सल में पाली पल में सब साफ जपेंगे बन वृदा पन बाढ़ जाए पापन के बाबू जपेंगे।

आड़ कोई और ना जाऊं जो बर जाऊं तो तुम दे पाऊं से उसे खमारे दारी है जंतु हजरा मारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरे हैं मरण काल का द्रास ने भरे हैं हो जो सदा हमारे बचा सरिया सर जी करे रक्षा राख ले हो मैं रख नहारी साहेब संत साहे प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम पुरी चतुर्दश कंता काल पाई ब्रह्म अवधरा काल पाई सब जीव अवधरा काल पाई कर भीषण प्रकाशा सकल काल का की आत्माशा जवन काल जुगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दयंत जसनु बजायो आदि अंत कह अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को बल मल कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी दे गुंजरिया सूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाई दे दुखी सुख पाई साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने गड़गड़ के बटबट की जाने जब उदगर करा करतार प्रजा धरत तब दे अपार जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे दर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरा निरालम जानत भेद भेद अरे आलम।

रंग भयो राव गई भूपा। आंड जजे रज से तज के ने उत्पज खान बहोर रज दीनी गऊ भूत राजा व बैठा गऊ समट भयो संग्रह कैठा। सगरी श्रेठ दिखाए जम पव आज जगा स्वरूप सुजम पव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग्रो। दोष जे उठ बो दुद बाता सकल मलेच करो रण काता जे हर तुझ तब सरणी परे दिन के दुष्ट दुदा वह मरे।

0: अवसर दिल ऐसे जिंद कवाओ कर आसन दिखो चाओ श्रीवा
1: ओड़ी आपी ने साजो आपी ने रचो नो दुए कुदर साजे करासन दिखो चाओ दाता करता आप तू

0: भक्त वचल हर बिरज है हर लाज रखाया जन नानक सनाल की हर नाम तराया।
1: श्लोक महिला पहला पहज पड़ो स्वाओ पहज चल चलने लग रहे आओ पहज चल कटे रेगा पहज सत्य विवाह

0: सगळ्या भावली के असले नान की बोलन का रोड के तेरा मेवाल केतिया कन कहानियां केते बेद विचार केते नचे मंगते गड़मर पूरे साल
1: बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राजे रानियां बोले अलपताल लख तकियां के मुंदड़े लख तकियां के हार

0: तुए चार भवाई जन नाग बोंदिया गंत न अंत
1: मंगन मन तो आए तो एक कहे कृत नचे सब कोई नच न छाते चले से रोए उठ न जाए सत न होए नचे कुदर मन का चाव नाम जीवन भाव चला मन भाव पौड़ी।

0: पंथ सावंत खड़ी मुंजो वन बाली राम राजे हर हर नाम के ताय गुर हर मार्ग चाली मेरे मंत्र नाम आधार है हो में बिख जाली जनान सदगुरु मेल हर हर मिलिया बनवाली श्लोक महला पहला
1: मुसलमान सिरे पड़ पड़ करे विचार बंदे तेज पवनच बंदी विक्रम को दीदार हिंदू सलाए सलाहन दर्शन रूप पार तीर्थ ना होए अर्चा पूजा गुरुवास बैकार

0: চোরা জড়াতে কুড়ে আরা খারাপ হবে কাজ, একদা খায় চলে তাও তাম কাই কাজ। जलथल जिया प्रिया लोहा करा कर ओ जे आके से तू है जाने इतना तेरी सार। नानक बता बुख सलान सच नाम आधा,
1: सदा आनंद रहे जनाते गुरु क्या पाचार महला पहला। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे तू यार घर बांधे टांकियां जल्दी करे पुकार। जल जल रो बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार नानक पुत्र ते कान किया।
0: ओ जाने कर तार पड़ी बिन सतगुरु किने न पायो, बिन सतगुरु किने न पाया सतगुरु इति आप रखे हो। कर प्रगति आ सुनाया सतगुरु मिले।

0: कुछ खिलाया, जग जीवन दाता पाया सेवा वाणी।
1: गौरी बिन सतगुरु के ना पाया, बिन सतगुरु के ना पाया, सतगुरु चाप रखे उनका प्रगटा सुनाया,

यार पहुंच लक्ष्य उतार हो जैसे ओ चलो है ओ भरी ओ जो है ओ जाती दिल सीखो है ओ मुख जाना मुख की शरण जाना बहुत माया होता है हमे कर सृजन तो पाया हमे बुझे चांद्र सुझे ज्ञान हमे उड़ा कर सुझे नानक हुकम लिखे।

0: दारू बीस माए कृपा करे जे अपनी पगुर का शब्द कमाए नानक सुनो जनो जम दुख जाए पौड़ी से किसी संतोष जिन सच हो सच दे आया ओनी मंदे बहन रखे हो कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बसी से अगला निज दे में कर सवाया वड़ियाई वड़ा पाया श्रीवार
1: वड़ियाई वड़ा पाया

0: करता चिंता करे जिन्हों पाया जग जुहारी स्वस्थ सिंह भग नानक सच्चे नाम बिन
1: लखने किया चंगियाईया लखुना प्रवान लख प्रभु प्रति था सहज योग बेबान लख सूतन संग्राम।

चाली साल पौड़ी सच्चा साहेब एक तो जिन सचो सच वरताया विश्व विश्व मिले सच अपनी सच कमाए सतगुरु ये सच पाया जिन कहने से सच वसाया मूर सच जानी मनमुखी जन्म गवाया

0: लिख पढ़िया ते ता करिया बो तीर्थ भव्या ते तो लव्या बो भे किया दे दुख दिया सहवे जिया अपना किया
1: अन न खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहने करे मोन विभूता क्यों जागे गुरु बिन सूता
2: सब पिताणा अपना किया कमाणा अलमल खाई तिरछाई पाई।

पत्ता पर जानी जान दे सच्चा हो कुर्सी मल उतरे तन करे अच्छा धोए पत्ता पर जानी जा सक घरे प्या

राम सकलाई कुड़ाल चढ़ी है। ओए तुमन अलग दिलाइए फते पाई है, जे वही कर कमाई जे होए पुर लिखिया, तां दूर इन्हां दी पाई नहीं।

तेरी शरण तेरे भरवासे पंच दुष्ट ले साधे ज्ञान ज्ञान किच कर्म न जाना।

0: सजगुरु संतों का धर्म गिरतवाओ, भजते का जोर गिरतवाओ, द्वापर रत पे का सत गिरतवाओ, कलयुग रत जन का गुण गिरतवाओ।
1: काम कहे सितंबर स्वामी सच में आचे साच रहे, सब गो समावे कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर। नाले प्राच जा नानक तो मुखंतर पाए, जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम बया पार जात गोपी ने आया। बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद तरबण हुआ, ना खुदाई अल भया।
0: नीर बसले कपड़े पहरे त्रिपुटानी मुड़किया, चार वेद हो इस त्यार पड़े गुणे त्रिचार विचार, बहुत करनी सा सौ नाथ।

0: मांस खाने करे नवाज छुरी वगान चंगल ताज चंगल ब्राह्मण पूरे नादु ना बावे हुई सार कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार करम धर्म का डेरा दूर नान कूड़े भरपूर मत्थे टिकाते धोती ककाई अछुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे परवान मलेच धान ले पूजे पुराण
1: अबास्या का उठा बक्का।

सफाई पौड़ी चिते अंदर संग तो फेक नदरी हेत चलाएंदा आपे उड़ियानिया आपे ही करम कराएंदा वडो वडा उन मेदनी सिरे सिरे दंद चलाएंदा नदर पटी जे करे सुल्ताना गाव कराएंदा

0: जिते जाए भाई मेरा सतगुरु सुल्तान सुहावा राम राजे गुरसिखी सुल्तान भालिया लै दूर मुकलावा गुरसिखा की घाल साए पई जिनर नाम दियावा जिना नान सतगुरु पूजिया तिन हर पूज करावा
1: श्लोक महला पहला जे कर सुख मनी सबसे सुख होए गोहे अते

बड़ी बड़ी आइया समन वसाइया करो मत हक दर विचो मारे बड़िया बुरी आइया सह सुखे

दरबार कोई सब आवे अपना जितना ही सोच कड़ी किता आप अपना आपे ही लेख संदिए जरण नहीं अग जग ताका इस गर्भ बंदिए मंदर

अनक जतन कर कृष्ण ना त्रापै। पेख अनेक अग नहीं बुझाय, कोट पाव दरगह नहीं सजाय। छूट सुनाय उपयाल, मोह व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जमडान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान। हर का नाम जप दुख जाय, नानक बोलै सह सुभाय। चार पदार्थ जेको मंगै, साध जना की सेवा लागै। जेको अपना धूप मिटावै, हर हर नाम हृदय सत गावै। जेको अपनी शोभा लूरै, साध संग होमै शूरै। जेको जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरनी पै। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताक बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जा का मिटै अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गनी है सब ते उचा। जा का मन हो सगल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन संप्रष्टिता, नानक पाप पुण्य लिपा। निरतन को तन तेरु नाओ, नावे को नाओ तेरा साओ। ने माने को प्रव तेरु मान, सगल कटा को देव दान। कर्ण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत में जानो आपे, अपन संग आप प्रवराते। तुमरी उस तुम ते हो ए नानक, अवर ना जान सिको। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म।

राष्ट्रपति रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन कृष्णानी जिन तू साया जिन उबारिया बाद वस्ता तुझे प्यार है दूध भर जोबन भोजन सुख दूत बिरद पै ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ पो दैन एह निर्गुण गुण कछु नाम पूजे बख्त लो तहु नानक तीजै जय प्रसाद हर ऊपर सुख बसै सुत प्रातमी बनता संग हसै जय प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदाई पावन पाव कमुला जय प्रसाद भुगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसै त्याग और संरचना ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे नानक कार लेहु प्रभ व्यापे आद अंत जो रखना।

बलुआ केतरा पीतर बस अनंत केल माया रंग रस दृढ़ कर्मा न मन प्रतीत काल नया वह मूढ़े पीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोक त्रोह यहु जुगत बिहान कई जन्म नानक राख लो अपन कर कर्म तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसू कनेरे कोई ना जाने तुमरांत उचे ते उच्चा भगवंत सगल समगरी तुमरा सूत्रधारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी।

पत जाए। अष्टपदी दस बसूले पाछ पावे, एक बस्त कारण बिखूट गवावे, एक पीना दे दस पी हिरले तो मूड़ा को कां करे। जिसा कस्यो नाही चारा ता को की जा सतनम सकारा, जा कै मला का प्रमिता सर्व सूता हूं मन उठा। जिस जाने अपना हुक्म बनाया सर्व थूक नानक तिन पाया, अंत अपनी देरास सात पीक बरत अंदोलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीता ही खोवे, बहुर का विश्वास न होवे। जिसकी बस्त तिस्या कर रख है प्रभु की आज्ञा मन मत है, उसते चौकन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत सर्प होवत जान अनेत, बिरखी छाया स्यों रंग लावे ओह।

वै नहि ताको हाथ ना वै कहे मन हर के नाम के प्रीत सुखदाई कर कृपा दान काप लै लाई मिथ्या तन धन कुटम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस उपर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जी वह हर के चरण मिथ्या सरवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर तर्प कोहिर मिथ्या नेत्र पिख पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजनन स्वाद मिथ्या चन पर विकार कुता वह मिथ्या मन पर लोभ लुभा वह मिथ्या तन ही पर पुकारा मिथ्या वासलेत विकारा बिन बुझे मिथ्या सब पहले सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा साथ बिना कहो बत सुचा बिरथा नाम बिना तनयंत मुख आवता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बैठे सब काम ज्यों कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते धन जय कट बस्यो हर नाव नानक ताक बल बल जाओ रह तवर कछवर कमावत मन ही प्रीत मुखो कंडलावत जान नहा प्रभु प्रवीण बार पेख ना काहू पीन अवर उपदेश है अपना कराय आवत जावत जन्म मरै जिसका अंतर बसा निरंकार तिसकी सीख करै संसार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानक उन जन चरण प्राता करो बिनती पार ब्रह्म सब जान है अपना की आप है मन है आप है आप आप कतन बेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यानव सगल ते रहत साव कछ जान है तुम की रहत जिस पावै तिस लै लड़ लाए संतनं तरिया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि सलोक काम करो दर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नान प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदे जय प्रसाद क्षति अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे जय प्रसाद सुबंधन तन लावे तिसको सिमरत परमगत पावे जय प्रसाद बसह सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रचना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याय ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ पटम हटावै तिसे त्याग कतवर लुभावै जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस कवि जय जय प्रसाद तो सब को मन मुख ताको जस रसन बुखन जय प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा ध्याय केवल पाठ ब्रह्म प्राप्त जी जप कर गह मन पावै नानक पासे ती कर जावै जय प्रसाद आरोपन चंदे ही लिव लवो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तिरौला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल चित्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु तंक जय प्रसाद तुतको न पहुचै मन सा सिमरो प्रभु चै जय प्रसाद पाए दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद अभुखन पहरी जय मत सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद असवह ससवारी मन तिस प्रभु को कबू नाम बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तनारा करो प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसे त्याए जो कलख है इहा उह नानक तरी रख है जय प्रसाद करै पुन बहुदान मनाट पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ सितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निक्की जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जसकै जय प्रसाद सुनह कर्ण नाद जय प्रसाद भिखै बिस्माद जय प्रसाद बुल अमृत रसना जय प्रसाद सुख जय बसना जय प्रसाद हस्त कर चलै जय प्रसाद संपूर्ण फलै जय प्रसाद परम गत पावै जय प्रसाद सुख सह समावै ऐसा प्रभु त्याग गौर कतला को गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनोह विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस सहदान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावह साच रे मन मेरे तू ता सुराच जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा त्यो प्रगास प्रभु दया ते कमल विकास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्वनदान प्रभु तेरी मह आपको कछु ना किन्हू लै जित जित लाभो

साजन के अचर्ज कथाष्टपति साधक सम्मुख जलहूत साधक संगमल सगली कोत साधक संगमित अपमान साधक संग प्रगट सुज्ञान साधक संग बुझ प्रम नेरा साधक संग सभूत नेरा साधक संग पाय नाम रतन साधक संग कुपर जतन साध की महिमा वर्ण कौन प्राणी नान साध की शोभा ब्रह्मा समानी साधक संग या गोचर मिला साधक संग सदा प्रफुल्ल साधक संग का वह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा

संग दुश्मन समीत साधु कैसंग महापुनीता। साध संग किस चौने बैर, साध का संग ना बिगा पैर। साध का संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध का संग ना ही हो ताप, साध का संग तजा सव्याप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बनाई। साध का संग ना कब हुंतावे, साध का संग सदा सुपावे। साधु संग बस्या गोचर लह, साधु कह संग चरता है। साधु कह संग बस्या स्थान उच्चा, साधु कह संग मेहर पहुंचा।

रहे भरपूर। सादकी शोभा का नाही अंत, सादकी शोभा सदा बेअंत, सादकी शोभा उत्ते उची, सादकी शोभा मुचते मुची। सादकी शोभा साध बनाई, नानक साध प्राप्त भेदना पाई। सलोक मन सटा मुख सटा, सोया वरना पेखा एक बिन कोय। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष। जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान। जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीर देख। ज्यों वसुता को खुद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ। नानक ज्यों पाव का सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रकाश। जैसे तारू पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उच्चते उच्चा। मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए। नानक जिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सबल किरीना। आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब पर मया। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समा। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा। ब्रह्म ज्ञानी ने धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी का हो सो भला। ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार। नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुत्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगीता। ब्रह्म ज्ञानी का होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस प्रभागी पाइया, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइया। ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन मा है। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्य न जाय अधाकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त दुखत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहात। ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार, ब्रह्म ज्ञानी अपना अहंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उड़तार है जो अंतरनाम, सर्व मैं पिछा है भगवान। निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक उपरा सगल निस्तार है। स्पदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पात्र रूप ना पिख नेत्र, साथी टहल संसंग हेत। करना सुने काहू की निंदा, साथे जाने पुष्को मंदा। गुर प्रसाद पिछया प्रहर है, मन की वासना मन ते तरह। इंद्रिय चित पंच दोख ते रहत, नान कोट मध्य को ऐसा प्रस। वैष्णो सोज सुपर सुप्रसन्न, विष्णु की माया ते हो तैना। कर्म करत हो वैने कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। काहू पाल की इच्छा नहीं बाछ, केवल भगत कीर्तन संग्राचे। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ वह नाम जपावे, नानक वैष्णव परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मन ते बिन सह सगला भरम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म। सार संग पत्ता मल होवे, तिस भगवती कीमत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नतनीत, मंत नर पै बिशन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रभुत है, राम नाम आत्म है शुद्ध। राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो ना आवे। वेद प्राण स्मृत पूजे मूल, सुख मैं जान सूल। चहो वर्ण को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोय।
कर कृपा तरो तारा पश प्रेत मुगत पात्र को तारा सर्व रूप का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत किते ना पाईया धर्म नानक तिस्मला जिस लिख्या तोड़ करम जिसका मन पर ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसन तन पाया तन पाया सदा निकट निकटार दान तो दास दरगह प्रमाण अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सोजी परै सगल संग्या तमे उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तुम्हें तावै जीवन मुकल सुखावै तैसा हरख तैसा उत्सोग सदा आनंद तह नहीं ब्योग तैसा सुवन तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभमान तैसा रंग तैसा रजान जो बरताए साई जुगत नानको पुरखई है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रखा तैसा तिन नाओ आपे कर्ण क्रामन जोग प्रभावै सोई हुन होगा पसरो आप होया नत तंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अवनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक उस्तत करै

सत सब किन्ना कोट मदे किना बिरलह चीना भला भला भला त्रा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत।

वदी संत का दुखन आ जाकटा संत का दुखन जमते नहीं चुटा संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक मह पाए संत का दुखन मत हो मलीन संत का दुखन सुबा तहीन संत के हते को रखे न कोई संत का दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे कर नानक संत संग निंदक पी तरह संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग ज्यों लवै संतन का दुखन सर्प जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन क्रमाए संतन का दुखन तृष्णा मैं जलाए संत का दुखन सब कुछ लाए संत का दुखन ते सब जाए संत का दुखन नित निचाए संत दुखी का ता को ना है नानक संत पावै ताउ पी गत पाए संत कनंदक मां अतताई संत कनंदक खंटक न पाई संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तहीन संत का निंदक दुखी हर दीना संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डाला गए संत के दुखी को सब त्याग संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरै संत की दुख ना सुख से डराय संत के दुखी को नाही ठाउ नानक संत पावै तन लय मिलाए संत का दुखी अद बीचे टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै संत के दुखी को ध्यान प्रमाइय संत का दुखी उजड़ पाइय संत का दुखी अंतर ते सोथा जो सास बिना मिट तपकी लोथा संत के दुखी की जड़ किसना है अपन भी जापे ही खाए संत के दुखी को वरना रखन हार नानक संत भावत लाए उबार संत का दुखी यो बिल लाए ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यो पाव की नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै के ला ज्यो बुआर चिल खेत मह दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सब मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस भावै सो इच्छिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिला सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरै ना जवाई है संत के दुखी की पूजन आस्था संत का दुखी उपचल न रास्ता संत का दुख ना तिष्ठा कोई जैसा भावै तैसा कोई होए पया किरत ना मिटै कोई नानक जानै सच्चा सोई साव का तिसके ओ करना हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तक करो दिन रात तिसे त्यागो सास ग्रास साव का शिवरता तिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना खेला करना हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा कर तिसे अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से सलोक तजो स्यान सोचना हो सिमरो हर हर राय एका सर मन रखो नानक दुख भरम पौ जायश्वरी मान की टेक बिटी सब जान देवन कोई कै भगवान जिसका दिया रह अगाए बहुर ना तृष्णा लग गए आए मारा राख को आप मान कै किसना हाथ किसका हुकुम।

सो प्रसन्न अष्टपदि अब नासी प्रमन मैराख मानु की तुम प्रीत आग तिस्ते पर नाही किसको सर्व निरंतर को सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर भी सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा दान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एहो नराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होगा हरन भरन जाका नेत्र कोर तिसका मंत्र न जान होर अन रूप मंगल सजा कै सर्व थोक सुनिय करता कै राज मह राज जोग मह जोगी तप मह तपीसर ग्रस्त मह भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक किस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्या वह से गुण मैं जाकू परमाए जन्म रैफने आवै जाए ऊच नीच तिसके अस्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख रह।

नाना बेदकर बंट बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट इसके साथ इसके ठाऊ जब तक जीवन हर नाउ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे स्मृत वेद प्राण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संगुद्र सुन सरवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद मह सो जंगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समाय समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिस सह बुझाए तिसे सब भली सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सतनाम गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दै प्रवेश सत नरत बुझै जे कोई नाम जपत ता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जन अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ तो करना हार अवर न बूझ कत विचार करते कीमत न जाने किया नानक जो भाव है सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझा तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राजन रह गुर के बचन पदार्थ लय उदा ते दुख कट नहार जन का संग करै संसार जन का सेवक सोड़ भागी जन का संग एकलव लागी गुण गोबिंद की तंजन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आदि सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत पर

अहंकारा सो सेवक चिस्त्या प्रवतारा नानक सो सेवक सास सास मारा है अपने जन का पर्दा ढक है अपने सेवकी सर पर रख है अपने दास को देव डाई अपने सेव को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत्र रख है ताकि गतमित को न लख है प्रभ के सेवको को न पहुंचाए प्रभ के सेवक पूछते उच्चे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नान सो सेवक दिश प्रगटाया नीकी कीरी में कल रख है पसम कर लश्कर कोट लख है जिसका सांस न काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन करत बहु पात तिसके करता बैठे जात मारे न रखे और न कोय सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नान प्रवर्त विडाणी बार बार बार प्रभ जपिया पी अमृत मन तंत्र पिया नाम रतंजन गुरमुख पाया तिस के छियावर नही दृष्टाया नाम धन नमो प्रंग नमो सुखर नाम का संग।

अंधकार दीपक परगासे नानक परमो दुख ते नासे सप्त माया ठांड वरताई अंध पया दुख नाथे पाई जन्म मन के मित्यन देसे साधु के पूर्ण उपदेसे भव चुका निरपोह बसे सगल ब्याज मन ते कह नसे जिसका सातन कृपा तारी सत्संग जपना मुरारी सिख पाई चुके परम गवन सुन नानक हर हर जस रवन निर्गुणा सरगुण पियो ही कला धारतन सगली मोही अपने चित प्रव्या बनाए अपनी कीमत आपे पाई हर बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर को सोई उत्पो त्रव्या रूप रंग पै प्रगा साधका संग रच रचना अपनी कल धारी अनकबार नानक।

सिमर नाम आधारु अवर पाव समित विसारु चरण कमल में उतारु कारण कारण सो प्राप्त समर्थ दृढ़ कर कहो नाम हरवत एतन संचो भगवंत संजना का निर्मल मंत एकास रखु मनमाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चाकुन छुटता वह सो तनहार सेवा ते पावह जिस को निक बाछ मीत सो सुख साधु संप्रीत जिस शोभा को करह पली करनी सा शोभा पजहार की सरनी अन क्यों पावी रोग न जाए रोग मिटे अरव खुद लाए सर्व निधान मह नाम निधान जप नंदर गय प्रवान मन प्रभु दो हर कहनाए दै दिस्तावता बैठाए ता को बिघन ना लागे कोई जा कर दसार सोए काल साती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रकाश चित कर जाए बत्याव नासी कहो नानक काटी जम्पासी सत विचार कह जन साचा जन्म रेतु कचु कचा आवागमन मिटै पल सेव आप त्याग सन गुरुदेव त्यों रतन जन्म कहो योदारु हर हर सिमर प्राण आधार अन पाप न छूत न हारे शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चालस ते रतना तू क्या लगता वह मूर्ख मना सोतमीत कुटंबर बनता इन ते कहो तुम कमन सनाता राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कमन छुटकार आसस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पसारी जिन दे तिस बुझना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तूले एने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाए आप जपहु अबरा नाम जपावु सुनत कहत रहत गत पावु सार भू सतार को नाओ सह सुबह नानक गुण गाओ गुण गाव तेरी उतरत मैल बिनस जाय हो मैं बिफैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास बरा सर नाम समाल छाट सनम सगली मना सासन पावै सचना हर पूंजी सन करो व्यवहारिया सुख कर गय जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाकै मस्तक लेख एको जापे को सलाहे सिमर एको मनाहे एक के गुण गाओ अनंत मंतन जापे भगवंत एको एक एक हराप पूरन पूरो प्रव्याप अनक विस्तारे ते पहे एक रात प्राचित गए

अंतर प्रकाश संत निवलाग पट भागी जप्या प्रभ सोई नानक नामृत सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत ले जन को प्रभ हो दयाल। सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक जन पया जन मरन दुख भरम गया। पुनी सरदासा पूरी राब लिया सा संग हजूरी। जिसका सा तिन लिया मिलाए नान भगती नाम समाये। सो क्यों बिसरै जे काल न पान सो क्यों बिसरै जे किया जान। सो क्यों बिसरै दिन साब कितिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जगन में राखै गुर प्रसाद को बिरला लखै। सो क्यों बिसरै जे बिस्ते काटै जन्म जन्म का टूटा काटै गुर पूरा सत्य है बुझाया। प्रभ अपना नानक जन ताया साजन संत करो एक काम आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अमरा नाम जपावो। भगत पाए तरिया संसार बिन भगती तन हो सी सार। सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़ा जात पाए विश्राम।

जब आकार एकछुना दिखते ता पाप मन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन समात तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वरण चेहना जापत तब हरक शोक किसे व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म तब हो कहा कि सोवत परम। अपन खेल आप वर्ती जा नान करना हार ना दूजा। जब होवत प्राप्त केवल धनी तब अन मुक्त कहो किसको गनी। जब एक हरक म पार तब नरक स्वरूप कहो कौन अतार। जब निर्गुण प्राप्त चैन सुभाए तब से सकत कहो कि तिठाए। जब आप है आप अपनी जो तर तब कवन डर कवन कत डर। अपन चलेता करना हार नानक ठाकुर अगम पार। अवनाशी सुख अपने आसन तह जनमन को काम बिना सन। जब पूर्ण करता प्रभ सो तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत गोचर प्रभिका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ नरंजन गोचर का दे तब कौन छिपे कौन बंधन बाधे। अपन आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरुख पुरुख पत होता तह बिन मैल कहो क्या होता।

शोषण समावे तैसे भूकम तृप्ताव कर्ण करा मन कर्ण हार नानक करते कना सुमार जा अपनी शोभापन संग बनाई तब कवन माय बाप मित्र सुख पाई जय सर्वकला पे प्रवीन तय वेद कतेव कहाँ कौचीन जब अपन आपा पुरता रह तो सगन सगन कहाँ विचार जय अपन उचापन अपने रात कौन ठाकर कौन कहिया तेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अथल अच्छे दे सुमाया उहा किसै व्यापक माया आपस को पया देश तो गुण का ना ही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन अचिन किसला कह चिंता जय अपन आप आपति आरा तय कौन कथ है कौन सुन न हारा बहो व्यंत उच्चे उच्चा नानक पस्वा पे पहुचा जा प्रत्यो प्रपंच कार त्यो गुण मैं किन्नो विस्तार पापुन ते पै कावत कौ नर को सुरुग बंसावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अन प्रकार की बख्यान अपन खेला कर देखा खेल संकोच है तो नानक टेका जय आपके भगत है आप जय पसरा पासा संत प्रताप तुह पाका अपे धनी उनकी सोबान बनी अपे कौतक पर अंध चोज अपे रस भोग निर्दोग जिस भावे तुसे अपना लावे जिस भावे तुखेल खिलावे बेसमार अथा अवंत तोल ज्यो बुलाव हो त्यों नानक दास बोल श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथ आप सुनन हार आप एक आप विस्तार जात भावे ता सृष्ट उपाए अपने भाण लै समाए तुम ते भिन्न ही कुछ होए अपन सूत सब जगत परो जा को प्रभ जो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सबता का हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिसरा कत कोई ना मारा सो मुआ जिस मनो विसारा तिस्ता जबर कहाँ को जाए सब सिरे नरेंद्र नारा।

संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संघ गण सागर तरो हरतन के पालो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार किम कुशल सहित आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित तवाहु नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुन कुमावत होत उधार आप त्रैलोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द नहद वाजै सुन सुनंद करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उतरे तिन कै साथे सन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सवरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूरन हुई सेवक।

0: ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੱਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੱਈਆ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਛੂਟਤ ਪਰਵਾਹ ਅਮੀਏ ਅਮਰਾਪਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤੀਵੇਂ ਸੰਤ ਕਰੇ ਮਨ ਮਜਨ ਉਬ ਜਿਨਹੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨਭੈ ਪਦ ਦੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਧਰ ਧਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਕੋ ਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਰ ਹੈ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪੁਰਖ ਹਨ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਦੁਰਜਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਤੈ ਪੀਵੇ ਸੰਤ ਕਰੇ ਮਨ ਮਜਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਹਨ ਦੁਰਜਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਦੁਰਜਨ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਨ 1635 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੱਤਵੇਂ ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੇਲਿੰਗ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੀੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਏ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਝੂਠ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਕਪਟੀ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ सोचण विचारन जैसी गल है कि उन्हां दा मत्था टेकना गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकना चूंकि इस तो बिना सरदा नहीं, वरना तो वो आदमी किधरे होर जाके कहंदे ने जी इस स्थान ते बड़ी शांति मिली। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अगे आन तां इस तरह नोट सुटदे ने जिस तरह किसे नूं ऐउं भीख दित्ती जा रही होवे, कोई सत्कार नहीं आउंदा। तुसीं बड़े आदमी वेखदे होवोगे पैसा ऐउं सुटदे ने ताकि आवाज आए, गोलक दे उत्ते आवाज आए, वो गोलक दी आवाज दे राही अपने कन्नां दे राही अपने हंकार नूं सुनाना चाहते ने, गुरु जे मैं ना आवां तां तेरी गोलक नहीं बनेगी, जे गोलक नहीं बनेगी तां तेरे दर दा खर्चा कित्थों चलेगा, ये मेरे करके चलदा है। ताईं वो आदमी अपने हंकार दी तन तन देंदे ने पैसा सुट के। जिस सिख दे गुरु की हजूरी दे च पैसे दी आवाज आए वो हंकारी आदमी है, वो अपने हंकार दी आवाज प्रगट कर रहा है, वो गुरु नूं भेटा नहीं दे रहा। भेटा तो बड़े सत्कार नाल रखी जाती है, बड़े सत्कार नाल। अणखीले आदमी अजे हैं, गैरतमंद आदमी हैं जिन्हां ने वेख्या जे कोई 500-1000 रुपए का नोट ऐ सुट रहा है तो उसनों सिरोपा नहीं दिता, तो वो अजे उन्हां कोल गुरु रामदास सतगुरु जी की असीस है, ये मनना पेगा। भागा वाले हैं वो पुरख, पर तुसी वेखे गुरु आवे तो दरवाजे बंद हैं, वो सज्जन पुरुष नहीं हैं, दुर्जन हैं। गुरु रामदास सतगुरु सचे पातशाह की वडियाई दे भट्टां दे सवैये दे च बड़ा कीमती सूत्र है, तै पीवे संत कर है मन मजन, वो अपने मन नूं मजन इशनान करवाउंदे हन। कौन संत? संत दे अर्थ ए नहीं जिसने लंबे चोले या गोल पग, गोल पग बननी चाहिए है, लंबा चोला कोई एतराज कुन नहीं है, लेकिन सवाल यह है भाई ये किसे संत होने की पहचान नहीं होनी चाहिए। संत होने की पहचान तो उसके किरदार, उसकी सज्जनता ही तो होनी चाहिए है, मेरे कपड़िया तो नहीं। हालांकि पुजारी जितने हरिमंदर साहब दे सन उन्होंने भी तो लिबास उस तरह के सन, उस तरह के कपड़े सन, खुला दाड़ा होना है, उन्होंने भी कई किस्म के दस्तारे सजे होने ने, उन्होंने भी माला पाई होनी है, उन्होंने भी हाथ च किरपाना लिया होनिया ने, क्योंकि वह भी सोचते हो असी भी तो उच्ची पदवी पर बैठे हुए हैं ना। ये गुरु तेग बहादुर कल तक कोई जानता नहीं सी, एक वणजारे ने, व्यापारी ने, मक्खन शाह ने एवं ही ढंडोरा पिट दिता ये गुरु हैं। असल देच उन्होंने तो यही लगता कि अजे भी गुरु धीरमल है, ये कितों आ गए, ये किस तरह हो गए, अज तक कल तक कोई जानता नहीं सी। मैं समझता पुजारिया ने सोचा होना यह भी कोई व्योंतबंदी होनी है, यह भी कोई छल कपट होना है, लोगों ने एवं ही ना दे दिता है। गुरु तेग बहादुर सतगुरु जी गुरु हैं, जे वाकई गुरु हैं तो कल्ले आउंदे, घटो घट पिछों लाओ लश्कर आउंदा। तुसी वेखदे हो अज भी ऐसे आदमियों नाले एक आदमी सज्जे, एक आदमी खब्बे, एक आदमी बिल्कुल नाल सट के खड़ा होंदा है, बेचारे डरपोक डरे हुए किधरे कोई कुछ कर ना देवे। सिख इतिहास तो यही कहता है ना, गुरु तेग बहादुर सचा पातशाह गरीब नवाज अमृतसर कल्ले ही गए सन, उस वक्त कोई नहीं सी, ताई बैठे रहे सारा दिन इंतजार करते रहे ये दरवाजा खुले तो मैं अंदर जावां, पर दौड़ ही गए, वल्ले पिंड लैके गईयां सन माइया, अमृतसर दियां उन्हां माइया नूं असीस दित्ती सी, वो असीस दियां भागी भागवान बीबिया अजे भी उन्हां दे चो कोई मौजूद होएगा, उन्हां दे परिवार दे जरूर होवेगा, वो अपनी इस वडभागता नूं महसूस करन। वल्ले पिंड लै गए, गुरु तेग बहादुर सचे पातशाह ने असीस दित्ती सी, एक सच कहा से मसंदा के बारे कहा कि नै मसंद तुम अमृत सरिए तृष्णा अगन ते अंतर सड़िए। लोगों ने आऊ ही बना दी है गल, नै मसंद तुम इनू हटा देता है, तृष्णा अगंते, इनू भी हटा देता है, पिछले दो अखरां दा काफिया मिला देता, अमृत सरिए अंतर सरिए, जो गलत कहंदे ने, गलत गल करदे ने। गुरु तेग बहादुर सचे पातशाह ने उन्ना दुर्जन जेड़े सन मसंद उन्ना बारे कहा सी, मैं मसंद तुम अमृत सरिए तृष्णा अगंते अंतर सरिए, दुर्जन आदमी स्नान नहीं कर सकता गुरु दे सरोवर दे। गुरु दे सरोवर दा जल दुर्जन आदमी पान नहीं कर सकता, संत ते सुरजन कर सकता है। ये संत सुरजन ते सज्जन ताई हर आदमी अपने अंदर आप परख सकता है, कोई दूजा किसी की सज्जन ताई का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। जे दूजा सर्टिफिकेट देवेगा तो जितनी सज्जन ताई झूठी होवेगी सर्टिफिकेट भी उतना झूठा होवेगा। ऐ वेखो सज्जन ताई झूठी है, झूठे सर्टिफिकेट लैके फिरदे ने लोकी। भट कहंदे ने गुरु रामदास सतगुरु जी तुहाडा अपना जीवन भी एक सरोवर की तरह है, तो उस सरोवर दे च दुर्जन इशनान नहीं कर सकते, संत ते सज्जन पुरख कर सकते ने। ते पीवे संत करह मन मजन, तुब जिन्हू सेवा करिया तिन भौ निवार अनभय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे कव कल ठकुर हरदास तने, गुरु रामदास सर अभर भरे। एक बार सारे प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बड़ी कीमती विचारधारा दीती है, गुरु भी सरोवर है, परमात्मा भी सरोवर है। गुरसागर रतनी भरपूर है, अमृत संत चुगै नहीं दूर है, सरोवर दी तरह है। अज दे इन्हां बचना दे च भी सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज गरीब नवाज ने यही विचार दिती है मन नूं समझांदे होए, हे मना मालक दे चरण जेड़े है ना, उन्हां दे गुण सरोवर दी तरह हैं, तू उस सरोवर दे च स्नान कर ते जुड़िया है, ताकि तू निर्मल भी होवे ते गुणवान भी हो सके। ये स्वभाविक है, जिहड़ा स्नान करदा है ताजगी भी मिलती है, स्वच्छता भी मिलती है, ते इशनान कीतियां आदमी नू निरोगता दे नेड़े होण दा भी सबब मिलता है। ताई सचा पातशाह कहंदे ने कर इशनान ग्रह आए, आनंद मंगल सुख पाए। इशनान करके अपने अंदर दे घर दे चाके टिक गए, आनंद भी मिलिया मंगल भी मिलिया, आनंद मंगल सुख पाए, सुख भी प्राप्त हो गया। गरीब नवाज सचा पातशाह ने सिख नू इस वास्ते पानी दे इशनान करन दी भी प्रेरणा दिती है, बाणी दे विच इशनान करन दी भी नाल नाल प्रेरणा दिती है। सरोवर दे अंदर सरोवर का मतलब यही है, जो पानी दे सरोवर दे च इशनान करे शरीर तन, ते बाणी दे सरोवर च इशनान करे मन। मन नू प्रेरणा देंदे होए गरीब नवाज सचा पातशाह बिहागड़े राग दे शब्दां दी लड़ी दे फुरमान कर रहे ने, बिहागड़ा महला पंजवा। हर चरण सरोवर तैं करो निवास मना, मना सुन, अपने मन नू संबोधन करना है, सुन मन, हरि दे चरण जो गुण रूप हैं उस सरोवर दे तू अपना निवास कर, टिकाणा कर। भाव अपने मन नू ए कहे मन तू उत्थे टिक जिथे परमात्मा दे गुण हैं चरण हैं ते उसका सरोवर है। फुरमान करदे ने निरा टिकण वास्ते नहीं टिकना, बल्कि इत्थे इशनान भी करना है। कर मजन हर सरे, हरी दे सरे सरोवर दे, मजन दे अर्थ ने इशनान, इशनान कर। कर मजन हर सरे सब किलबिक नास मना, मना जदों तू हरी दे सरोवर दे च निवास करके मेरा निवास नहीं करना, स्नान भी करना है। निवास कर लिया पर स्नान ना कीता, मैलापन तो उसरा रहेगा। पानी दे अंदर जांदे ने ना, डाइव करदे ने, गोताखोर थले तक चले जांदे ने, पर उन्होंने अपने पूरे शरीर दे उत्ते प्लास्टिक का एक लिबास इस तरह का पाया होंदा है। समुंदर की 8 मील की गहराई दे च जाके भी उन्होंने शरीर दे उत्ते पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। वो तो चलो उत्थे रिसर्च करन गए, डाइव करन वाले, पानी दे अंदर चुभियां लाण वाले, वो तो कोई ना कोई खोज करन गए, मच्छियां दी, मूंगे दी, होर बड़ा कुछ है। 42 लाख जी जल में होते उन्हां दी खोज देखभाल रिसर्च करन गए, वो तो ठीक है। पर मना तू सत्संग दे सरोवर दे इच आवे ते इस उते हंकार दा अपना पूरा दा पूरा लिबास पाके आ जाए तो तू दस इस सरोवर दा एक भी कतरा तेरे शरीर नू लगेगा? नहीं लगेगा। तू निवास ता कर लिया पर इशनान नहीं कीता। गुरु अर्जन देव जी महाराज सचा पातशाह पहली पंक्ति दे इच कहने ने, निवास कर मन तै करो निवास मना, निवास कर, टिकाणा कर, रह इत्थे। पर किधरे भुल ना जाए बई सरोवर च सिर्फ रहना इस वास्ते नहीं आया, इसते च इशनान करन भी आया। तो उस इशनान की प्रेरणा फिर दूजी पंक्ति दे च कहंदे ने, कर मजन हर सरे, हरि दे सरोवर दे च इशनान कर। जो हरि दे गुण है ना, वो हरि दा सरोवर है, ते तू उसते च इशनान कर। सब तिलबिख नाश मना, हे मना तेरे सारे पाप जो तू कीते होए हैं। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, वो जेड़े कीते गए पाप है ना, तू जान बुझ के कीते, ते फिर ए भी तू सोचिया ये पाप थोड़ी है, ये तो अपनी इंजॉयमेंट है, ये तो थोड़ा मन का परचावा है, की होया थोड़ा चोरी कर ली, की होया जे थोड़ा ये कर लिया। ए कीते गए पाप ते पापां दे प्रति अवेसलापन, इसनूं गुरु रामदास गुरु तेग बहादुर सचा पातशाह कहंदे ने ये अचेत अवस्था है। नर अचेत पाप ते डर दे, अचेत नर पाप तो डर, डर अपने आप नूं थोड़ा डरा, पाप करनूं अपने आप नूं बचा। गरीब नवाज सचा पातशाह कहंदे ने सब किलबिख नाश मना, किलबिख दे अर्थ होंदे ने पाप, कीते गए तेरे पापां दा नाश हो जाएगा। गरीब नवाज सचा पातशाह कहंदे ने, कर सदा मजन गोबिंद सजन, इस मजन नू इशनान नू अगली पंक्ति दे च फेर कहंदे ने। कोई ये ना कवे भई ये तां पुनरुक्ति हो गई, रिपीटिशन हो गई, नहीं, मनुख नू दृढ़ कराण दे वास्ते बार बार इक्को गल कहनी पैंदी है, तां वी बिचारे दे पल्ले नहीं पैंदे। लोकी कहंदे ने पुनरुक्ति है, बार बार दोहराया जा रहा है, कि एक वारी दे कहण नाले तैनू समझ आ गई गल खत्म, पर जे समझ ही नहीं आ रही ते तू कहने बार बार बार बार। सचा पातशाह हुण दूजी बार फिर कहंदे ने, कर सदा मजन, सदा ही हमेशा ही इशनान कर गोबिंद सजन, परमात्मा जैसे सज्जन दे सरोवर दे दुख अंधेरा ना से, तेरी जिंदगी दा दुख ते हनेरा ये खत्म हो जाएगा। गरीब नवाज कहंदे ने, जन्म मरण ना होए तिसको मिटकटे जम के फासे, ऐं व्यर्थ दा जन्म लैके मर जाना, मर के फिर जमदे रहना, ये व्यर्थ दा जन्म मरण दा जेड़ा है ये तेरा कटिया जाएगा फाहा। गरीब नवाज सचा पातशाह कहंदे ने, जमदा फाहा भी तेरे गलों उतर जाएगा। मेहरबान सतगुरु जी फुरमान कर रहे ने, मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो, सत्संग चाके मिल इस विच इशनान कर, इस नाले प्यार पा तू। सचा पातशाह कहंदे ने, तह पूरन आसो, तेरिया सारिया आस्थावां मुरादा पूरिया होनगियां। बिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो। मालक जी कृपा करो, पंजवें पातशाह कहंदे ने बिनवंत, मैं बिनय करके कह रहा, तुसी साडे ते भी कृपा करो। नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो, तुहाडे चरणा कमलां दे विच मेरा मन निवास करे, सचा पातशाह बख्शिश करे, कृपा करे। असी भी गुरु दे, परमात्मा दे, सत्संग दे सरोवर दे चाके इशनान करिए, ते ओ इशनान साडे अंदर दी मैल उतार देवे, साडे अंदर नू साफ कर देवे, ते कदी इस अनुभव दे चो मनुख दा मन जाए, कर इशनान ग्रह आए, आनंद मंगल सुख पाए, इस दी दात प्राप्त होवे। भुला चुकां दी खिमा कल फिर आप जी दी सेवा दे विच दास बेनती करेगा। असीसां दी खैर पाउंदे होए सारे गजवट के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु
0: जी की फतेह।
2: थैंक यू फॉर लिसनिंग टू CISK सिख रेडियो 94.3 FM, ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न सिंह सभा गुरुद्वारा इन विलियम्स लेक, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singsava2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
3: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Tusi sun rahe ho Sikh Radio 94.3 FM. ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singsava2@gmail.com, singsava2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जिनके हृदय सच वसे तिनका नाम फकीर, जिनके हृदय तू वसे तेरा गुणी गहीर, पंड सूना का होवे खड़िया होन सैकड़े गड्डिया, सौ विघा जमीन होवे चरद

0: अज का प्रोग्राम हिंदुस्तान की एक मनी पर मनी रिटार्डन कंपनी वालों पेश किया जा रहा है। आओ जो सिक्खी का असूल है सब संगत गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगतां दी अरदास नूं मुख रख के हुकम नूं मुख रख के बहुत सारिया डिमांडा नूं मुख रख के अज पेश किया जा रहा है इतिहास गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज का अवतार। एक दिन की गल है माता गंगा जी ने दिशाले सुकने पाए बारिश की सैलाब तो बचाने लई दिशाले सुकने पे जदों इक गोली ने वेखे इन्हें जाके माता गंगा की जठानी माता करमो नूं आख्या मां करमो वेख तेरी दराणी दे कर किन्ना किन्ना कीमती माल है किड्डे सोहणे दिशाले ने किड्डे सोहणे मंदिर बना रहा तेरा देर किद्दां मत्था टेकण वालियां दी उत्थे भीड़ है। बड़ा दुख होया करमो दे दिल नूं जदों बाबा पिरथी चंद घर आया अपनी दुख भरी सारी कहानी माता करमो ने पिरथी चंद नूं दस के आख्या स्वामी जी जे तुसीं अपने पिता की सेवा करते जे तुसीं अपने पिता की आग्या च रहिंदे जिहड़ा माल गंगा दे घर है वह साडे घर होना सी जिहड़े महल उहदे बन रहे ने वह साडे बनने सन तुसीं पिता की सेवा नहीं कीती असीं माल तो वांझे रह गए। सुन के गल करमो दी पिरथी चंद ने अपने लम्मे सारे दाड़े नूं हथ मार के आख्या करमो तेरा नाम ते करमा वाली रखिया तेरी मां ने पर तेनू अगल थोड़ी जापदी है ए दस जिस गंगा दे कर पुत है नी उन्हें दिखाले की करने ने जिस गंगा दे कर पुत है नी उन्हें महल की करने ने जिस गंगा दे कर पुत है नी उन्हें पैसे की करने ने जो कुछ बना रहा है गुरु अर्जन जो कुछ उन्हें जमा किया होया सारा साडे पुत्र मेहरबान जोगा साडी नौ ने सामना जिवें हौसला दिता करमो नूं पिरथी चंद ने अगलिया लाइना च मेरे साथी इउं बयान कर रहे हैं
1: जीरा हाथ आ गए उन्हें सामना

0: अगे सिख ने आख्या गुरु के महल आउंदे ने ते बाबा बुढ़ा साहब ने आख्या गुरु क्या महिला नू किधरों भाजल पै गई। ये गल्ला एवें ही ने खाम ने जे बाबे बुढ़े ने शराब देना फिर वह कौन देवेगा। ओ बाबा बुढ़ा साहब जिहड़ा गुरु नानक दे घर दा कई चिर इंचार्ज रहा, गुरु नानक परदेश की यात्रा ते जांदे रहे, संगतां नू तारन वास्ते जांदे रहे, लोकां नू मिलन वास्ते जांदे रहे, ते अपने घर दा राखा बाबा बुढ़ा साहब नू छड के जांदे रहे। ओ बाबा बुढ़ा साहब जिहड़े एडे करनी दे मालिक सन, ओ बाबा बुढ़ा साहब जिन्हां नू ब्रह्म ज्ञानी का खिताब हासिल है, जे उन्हां ही शराब देना फिर वर किन देना सी। मेरे उस्ताद साहब ने चार लाइना संतां दी हस्ती मुताबक लिखिया ने, ओ कहिंदे ने संत हुंदे न्यारे ने जग विचों विच खेह दे मोती खिलार देंदे, संत फल लाउंदे उन्हां बूटियां नू, बूटे मुड़ तो जो कंडे खार देंदे, संत जी दे ते हो जाण दयाल पूरे, दुध पुत ते पद्मणी नार देंदे, ऐबर जी दे ते हो जाण नाराज फकर, ओनू हर हर गल चो हार देंदे, जोगी सिंगा की खेल उचारने फकर डुबदियां दे बेड़े तार देंदे। ये बाबा बुढ़ा साहब ने शराब देना फिर वर किसने देना सी, संत की मंजिल की है सुनो।
1: बड़ा औखा है हीरे विच शेर पौना, किसे मुड़ा औखा उस्ताद होना, कहरावां गुलामां दी जिंदगी तो औखा।

0: भाई गुरुदास बाबा बुड्ढा दर्शन करने आए सी, गुरु साहब नू नाल लजा के दोना दर्शन पाए सी।
1: ओ मन लैनिया जोगी सिंह पुरुष कईया लोकां ने भाई गोबिंद दे जन्म ते खुशियां बहुत मनाईया लोकां ने।
2: इस तो पिछों जो कुछ होया वो बड़े वड्डे विस्तार की लोड़ है, फिर कदे बयान करांगे। हुण कुछ मिनट दीआं बातां ने, यह ठीक है मेरे तो पहला कमीशन बड़े हुए ने, किसी ने अपने वर्गा पैदा नहीं किया। मैं जतन किया कि मेरे बाद विच भी मेरा नाम ते मेरी कविता नूं कोई जानन वाला कोई ऐलान करन वाला रहे, इसलिए उन्हां हीरियां विचों एक गुरमुख सिंह एम ए है। यह मैं माण नाल कह सकदा कमीशन बड़े ने, कविता बहुत जानते हैं, कवीशरी बहुत जानते हैं, पर गुरबाणी इन्ना जानना यह मैं समझदा गुरमुख सिंह के हिस्से आया। हुण मैं कुछ वनगी गुरमुख सिंह के ख्याल की साढ़े तक पहुँचाउणी चाहुंदा, तुहाडी जान पछाण गुरमुख सिंह नाल करवाउणी चाहुंदा। तो मैं कहूँगा काका जी, हुण यह कहना कि गुरबाणी का इतिहास का की संबंध है, ये सारे लोग जानते हैं गुरबाणी रूह है, इतिहास शरीर है। इस बारे अपने विचार रिंदा मिनटा में गुरमुख सिंह एम ए ने पेश करने ने। सब संगत सुनो, मेरे नाल फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
3: हुक्म होया है कि गुरबाणी बारे विचार की जाए। दुनिया के कुल धर्म ग्रंथ दिखे हैं, पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की उन्होंने खास विशेषता है। पहली गल तो यह है, बाकी कुल दुनिया के धर्मां के मजहबां के जिन्हें भी ग्रंथ हैं, उन्हां दी रचना उन्हां दे पीरां पैगंबरां दे संसार तो चले जाण तो बाद हुंदी रही है। इको एक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ऐसे ग्रंथ हन जिहड़े साडे पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने आप अपने हत्थीं इस दी संपादना कीती है। दूसरी गल, बाकी धर्मां दे ग्रंथ उन्हां दे विच कोई वाद काट कीती जा सकदी होवेगी, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक ऐसे ग्रंथ हन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचखंड जाण लगे, जिस रूप अंदर कौम नूं गुरु ग्रंथ साहब दे के गए ने, अज भी साडे कोल उसे रूप में मौजूद है। मैं एक दिन ईसाइयां दा पवित्र ग्रंथ अंजील उहदे बारे पढ़ रहा सां, उहदे विचों पढ़िया कि उन्हां दीआं विद्वानां दीआं रिसर्च कमेटियां बैठदियां रहियां ने, उन्हां ने अपने धार्मिक ग्रंथ बारे बहुत भूखिया वाचिया है, जो उन्हां नूं चंगा लगा वह उन्हां ने उहदे विच होर ऐड कर दिता, जो उन्हां नूं कुछ गलत जापिया वह विचों कढ दिता गया। मेरा कहण तो भाव दर्जना वार उन्हां दे पवित्र ग्रंथ विच तब्दीली हुंदी रही है, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक ऐसे ग्रंथ हन। सिख धर्म अंदर कोई महान संत हो सकदा है, महान पूजा योग हस्ती हो सकती है, महान शख्सियत हो सकती है, अकाल तख्त का जथेदार भी कौम वास्ते सुप्रीम है, पर उन्हूं भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि अपने को लक ना दे विच पा सके जां लक ना दे विचों कढ सके। जे इहदे विच कोई अदला बदली करन दी गुंजाइश हुंदी तो पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी दिल्ली के बादशाह जहांगीर ने आख्या सी, महाराज जो तुसां गुरु ग्रंथ साहब रचिया है जे कदे इहदे विच एक दो लाइना हजरत मुहम्मद साहब की सेवत च पा दिओ तां तुहानूं कोई कष्ट सहना नहीं पवेगा। तो उस वे गुरु साहबां ने जवाब दिता सी, आख्या बादशाह तैनूं भुलेखा होवेगा, यह मेरी बाणी नहीं, यह तुरकी बाणी आई, तैन सगली चिंत मिटाई, हम आपों बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो, बुलाया बोली तेरा। साडे वड्डे गुरु नानक देव जी कह गए ने, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान ले लालो। साडे पिता गुरु रामदास जी महाराज का फरमान है, बाणी गुरु गुरु है बाणी, इस बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रताप गुरु निस्तारे। मेरा कहण तो भाव गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने सत्तियां लोहां ते आसन ला लै, अपने मुबारक सीत ते तत्ती रेता पा ली, उबलदियां देगां विच उबाले खा लै, पर उन्होंने गुरबाणी में कोई मिलावट होन नहीं दिती। इस तो अगे चल के सतवें पातशाह गुरु हरराय साहब जी नूं दिल्ली दे बादशाह औरंगजेब ने अपने दरबार अंदर सद्या, सरबरां ने आप जाण दी बजाए अपने लायक ते योग पुत्तर बाबा राम राय जी नूं भेजिया। ये बहुत वड्डा विद्वान सी, बादशाह नाल मुलाकात होई, बादशाह ने सवाल किया, आखा जो तुसां गुरु ग्रंथ साहब रचिया है इहदे विच साडे मुसलमान धर्म की तुहीन की गई है। राम राय ने बड़े सोहणे ढंग नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की व्याख्या की, आखा बादशाह तैनूं भुलेखा है, गुरबाणी पढ़ के वेखो, इहदे विचों फरमान जारी हुंदा है, अवल अल्लाह नूर उपाया قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پھلے کو مندے سب سانجی وار سدائن تم کسے رنج سے باہر آ جیو ایک پتا ایک سے ہم بار تم میرا گرہائی ختری برامن شود ویش اور دیشوں ورنا کو سانجا بادشاہ دی تسلی تاں ہوگی پر کسے ورودی نے پکا پایا ہویا سی کہن لگا نہیں آسا دی وار وچوں تک پڑ کے سنائی گئی ہے مٹی مسلمان کی پیڑے پی تمہار جدوں یہ شبد آخیا ہے تو بادشاہ اورنگزیب نے آخیا رام رائے کی یہ سارے مسلمان دھرم کی تہینی کیتی گئی اتنے آ کے گراں دا ودوان بیٹا ہیرا بیٹا وہ بھل گیا انہیں تھوڑی جی غلطی کر لی آخیا ہو سکتا بادشاہ مینو سرکاری افسر رسوخ نال پتا جی نے جان تو بعد یہ گرگدی مینو دعا دے کہہ لگا بادشاہ گل اس طرح نہیں ہے بانی اس طرح ہے مٹی بے مان کی پیڑے پی کمہار میرا کہنے تو بعد ایک شبد کی ادلا بدلی کیتی ہے سکھاں نے ساری کہانی گرو ہر رائے صاحب نے پترکار ہی لے کے بھیجی ہے کہ تہاڈے پتر نے آ گربانی وچ ملاوٹ کیتی ہے تن ہن گرو ہر رائے صاحب گربانی دا ایڈا وڈا ستکار کیتا ہے اپنے پتر نو سدا واسطے اس واسطے سکھی تو خارج کر دیتا ہے کہ انہیں گربانی وچ ملاوٹ کیتی ہے میرا کہنے تو بعد کوئی دنیا دا بندہ گرو گرنتھ صاحب ایک لاکھ کنا نہ پا سکتا ہے تے نہ کر سکتا ہے تیسری گل باقی دھرماں دے گرنتھاں اندر کیول اپنی قوم نو سکھا ملتی ہے پر یہ گرو گرنتھ صاحب مہاراج ہن جتھے یہ کیول سکھاں دا گرنتھ نہیں جے اتھے پنڈت آن

0: खुश करन लाई सम्राट ताई राम राय जहीरा फुल गया जवान गुरा दा ही आती चट पैरां दे विच रुल गया
1: गुरु ने

परमात्मा की साजी हुई इस दुनिया में कुछ वस्तुआं ऐसा हैं जो एक बार मिलदिया ने बार बार नहीं, उन्हां चो एक हन मापे रब तां किसे ने तकिया नहीं, पर जे तकना होवे तां मापे अगे जरूर तकिया जा सकदा है। किन्ने वड्डे भागां वाले ने ओ लोक जिन्हां दे सिर ते मापिया दा छाया मौजूद है। चौथे पातशाह ने माता पिता नाल करन वाले झगड़े नूं पाप कहा है। काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिन के जने वडीरे तुम हो तिन सिउ झगड़त पाप। आओ कमाइए चौथे पातशाह दे वचना नूं, मापिया दा करिए सत्कार, जिन्हां ने सुखा सुख सुख के सानू परमात्मा तो हासिल कीता। मां ने 9 महीने गर्भ च रखिया, खैर मंगी जन्म दिता, आप गिल्ली था ते सानू सुखी था पाया, अपनी छातियों अमृतमयी दुध पिलाया, लिखाया पढ़ाया, सूझ बूझ दिती ते होर बहुत कुछ। ऐसे महान माता पिता दा देन कई चुक नहीं दिता जा सकता, पर रब समझ के उन्हां मापिया नूं सत्कार जरूर दिता जा

उस विचार में पेश कर दें। ऐसी कई चीजें किसी के दिन पढ़ने देंगे जो भी वो चीजें गहने पानी जानी है वो कभी छुड़ा लेंगे नहीं। गहने पाने वाले का इन्नत दावा जरूर रहता है कि इस चीज पे मेरा भी कोई हक है, इसलिए तेरे अगे रह पा रहे ना मुझ जदों भी छुड़ाना जहां छुड़ा सकना वापस ला सकना। पर उसके दरमियान तू कोई चेंज नहीं करेगा, पेड़ भर नहीं करेगा। किसी एक इस तो अगला संबंध है वो है वेद देव का। तो जब कोई चीज फरोखत कर दिखती जाती है तो वेद दिखती जाती है उसे विश्वी एक लफज लिखे जाते हैं। अज तो हम इस चीज नाल मेरा कोई हक अधिकार नहीं है लगता है। इस सारे वक्त इस दे हुए जिमें दिल चाहे अगे इस बदल सकता है, बना सकता है, रख सकता है, वेख सकता है। सारे वक्त इस मैं वेख रहा तो मैं कहो कि किसी ख्याल करो वेची हुई चीज में कोई बार बार नहीं देख सकता। एक चीज इको थान से बिकती कोई इको ही वस्तु ऐसी भी वेच देंगे, उन्होंने भी वेच देंगे, उन्होंने भी वेच देंगे, धोखा देगा पेट बन जाता। नलकी पिछले श्री गुरु साहब गुदानी अंदर वेचन की गल खासकर सिर के वेचन की गल कोई एक थावे अपने आप के वेचन की गल कोई एक थावे नहीं आई, बल्कि जिते भी वेचन की गल आई है ना उत्थे संपूर्ण रूप में सारी शक्ति के केंद्र में वेचन की आई है। गुरु ने बाणी विच गुरु अगे वेचन वाली चीजों का जो जिक्र किया उदो दो चीजों का किया। इतना भी आप दें

आध्यात्मिक परिलक्ष बदल जाएगी। मत जो कुछ तैयार कर रही है, जो विचार पैदा कर रही है, बदल जाएंगे। बाबा कबीर जी ने एक बात की, कहने लगे कह कबीर बुद्ध हार नहीं मेरी, बुद्ध बदली शुद्ध पाई। हम मसला आ गया कि जो सिर भेद करना है तो मानो विचारों का वो प्रगटावा पैदा करने वाली, निजात करने वाली, विचारों को पैदा जन्म देने वाली सारी शक्ति गुरु अग्गे बेची जाती है। जे मन वेच दिना तो जिन्हें एक मन में स्थित टिके हुए विचार ने वो गुरु के हो जाएंगे, वो बिक जाएंगे। हम विचार तो बिना हाथ भी कोई काम नहीं कर सकते, विचारों के अधीन है। विचार तो बिना पैर भी कोई काम नहीं कर सकते, वो तुर ही नहीं सकते, फैसला ही नहीं कर सकते किधर जाने। मन के अधीन है, मन ने जो प्रेरणा देनी है उस पास जाने का। बिना मन की मर्जी के प्रकारे के बिना उनके उपराले के प्रेरणा के जबान बोलती भी शक्ति नहीं बोलते। इसको साबित होया कि जे तू शीश अर्पण कर देना, जे तू मन अर्पण कर देना, ना तेरी बोली अपनी रहनी है, ना तेरे विहार अपने रह देने, ना तेरा तुरना कर्म का कोई हिस्सा तेरा अपना नहीं रहेगा। मैं ऐसे रुकना चाहूंगा। गुरु आखिर ने हमारी जात पात गुण शब्द जिन्नी जात है ना संसार अंदर, गुरु ने बाणी में इस गल मन्ने है कि जात जन्म से आधारित नहीं,

मेरा शरीर अभी ठीक देख ले, सही गुप्त का कहने फिर हम देखिए सिर को गुर के अगली लाइन अंदर फैसला दिन तेने कह लगे जदों मैं गुरु अगे सिर बेचया उस दिन तो मेरा नाम गुरु का सिख होया। उस तरह ने सिख बनन लई भी परसों कल की किसी ख्याल करियो जन्म तो कोई सिख नहीं हुंदा, जन्म तो केवल मनुख हुंदा। मैं की तुसी रब केवल मनुख बनाया, ना उन्हें हिंदू बनाया, ना उन्हें मुसलमान बनाया, ना उन्हें ईसाई बनाया, ना उन्हें सिख बनाया, उन्हें केवल मनुख बनाया। हां मनुख विच एक हक दे दिता तू जरा वड्डा होके तू फैसला करना कि तू की बनना। मैं तो एग्जाम्पल उन्हें भी क्या सी रब कोई डॉक्टर नहीं बनाता, कोई इंजीनियर नहीं बनाता, वो केवल मनुख बनाता। वो मनुख एक डॉक्टर भी बन सकता है, एक इंजीनियर भी बन सकता है, भगत भी बन सकता है, डाकू भी बन सकता है, हिंदू भी बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है, सिख भी बन सकता है, ईसाई भी बन सकता है, बन सब कुछ सकता है। एक अधिकार दे देता है लेकिन उन्हें एक मनुख पैदा करता है। अगर किसी जिन डॉक्टर बनना हो किसी मेडिकल कॉलेज में राय उस मसाद उस निशंगत लेनी पड़े। जे किसी भगत बनना हो किसी भगत की संगत में बैठना पड़ेगा, डाकू की संगत हो जाएगी डाकू बन जाएगा, जिन्हें हिंदू बनना हो किसी ब्राह्मण के घेरे में जाके उनके को पूछना पड़ेगा हिंदुइज्म की, क्योंकि ये सारा कुछ उन्हें अपनी मुट्ठी में रख लिया। जिन्हें मुसलमान बनना हो कुरान शरीफ के नेड़े होके इसे ईमान को लो अगवाई लगनी चाहिए, कुछ बनना पड़ेगा। हिंदू बनने लिए इन जनेऊ पाने की रस्म अदा करनी है, मुसलमान बनने लिए इस मुसलमान की रस्म अदा करनी, ईसाई बनने लिए इन व्यक्तित्व रहना पड़ेगा, कुछ तो कभी पड़ेगा। इस तरह गुरु ने बाणी भी डाक दिता, फैसला देता, कहने लगे जो तू सिख बनना चाहे वो भी जन्म करके नहीं मत समझे मैं सिख ने घर जन्म लै लिया बस मैं सिख बिल्कुल सिख बनने लिए भी तेन कुछ करना पड़ेगा। तो मैं की सदगुण बाणी चाकया कहने लगे

पता नहीं हो जा रही है, क्योंकि ऐसे गुरु के चेले भी बन गए, थां थां के चेले बन गए हैं। इसलिए साधी लाज रखने की जिम्मेवारी गुरु खोरे ना निभा रहा है। जिस दिन असी केवल गुरु के चेले बनेंगे, उस दिन साधी लाज पात का रखवाला गुरु होगा। गुरु कहते हैं।

केवल गुणस्थित कहा, बहुत ही वरायटी जड़ी श्री भजन साहब ने मान्यता नहीं दिखती उसके हृदय अच्छी क्यों जाएगी। गुरु ने मान्यता दिखती है केवल गुरु से शब्द अच्छी, केवल गुरु के चेले थां थां के चेले नहीं, ताकि गुरु उस लगपात का राखा हो गए। इन्हें शब्द नरसिमा दाजिक हाँ फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।